0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

cái chắc của chúng ta

0: लाइफ कब कौन सा ट्विस्ट ले ले हमें पता ही नहीं है। इस पिक्चर से देखिए कितना कुछ सीखने को मिलता है। इस गाने के बाद दोनों में प्यार बढ़ता है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने टाइप होता है, लेकिन फिर बिल्डिंग के ऊपर ले जाके शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को नीचे लुढ़का देते। जिंदगी में भी ऐसे ट्विस्ट आते हैं, हमें लगता है सब अच्छा चल रहा है, ढक से कोई मुसीबत आ जाती है, लेकिन घबराने का नहीं है, काजोल बन के डटे रहने का है, पूरे डीप में जाने का है, और उधर से शाहरुख खान जैसे किसी दुश्मन को पकड़ने का है। इस फिल्म की कहानी से तो मुझे यही समझ में आया। फिलहाल के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, मदन चोपड़ा इस फिल्म में विलेन मदन चोपड़ा भी तो थे, दिलीप ताहिल साहब। वैसे सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में याद रखिए कितने भी सरप्राइजेस आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी ऐसे पल आ जाएं जब आपको कुछ समझना आए कि क्या करना है, बस आपको तुरंत मस्त मौल गौरव के साथ सुबह सवेरे मिर्ची मॉर्निंग्स या शाम को शाम शानदार सुन लेना है, क्योंकि यहीं से सब ठीक होता है भैया। हमारे पास सारे रास्ते हैं, और मुसीबत से कभी भागना नहीं, मुसीबत का डट के सामना करना है, और एक दिन तो मुसीबत कहेगी अरे बड़ा बेहाया यार, ये तो हमारा डट के सामना कर रहा है, छोड़ो इसको, छोड़ के किसी और को पकड़ते हैं। ऐसे पॉजिटिव नोट वाली बातें करनी चाहिए सुबह सवेरे। आप सबको एक बार फिर से गुडी गुड मॉर्निंग। चाय का कप या फिर करक के साथ आप कॉफी पी रहे हैं या फिर अपनी मॉर्निंग की वो प्रोटीन शेक, सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमें पता है आप उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, हम भी आ गए हैं। आइए मिलके बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। मिर्ची पर थॉट,
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। मिर्ची।

0: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे, कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
0: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर तो है।
0: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो, कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा,
0: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
0: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना, खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार, पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
0: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
0: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
0: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं, कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
0: नहीं, पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
0: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा है तू?
0: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: काश यहाँ भी कभी बादल बरस जाए, जून जुलाई में तो आनंद आ जाए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, क्योंकि आ गया मस्त मौला गौरव एक बार फिर से आपकी सुबह को हसीन खूबसूरत बनाने अपने इस ढेर सारी बातों से, आवाज से। इन सब के बीच आज का दिन इतिहास के पन्नों में व्हाट्सएप डॉक्टर इसके लिए जाना जाता है। यस, बात करूं तो ये बता दूं कि जुलाई 27th 1940 दुनिया को एक खूबसूरत एनिमेटेड शॉट मिला। यस, और नाम था अ वाइल्ड हेयर। वेल, ये शॉर्ट फिल्म का डेब्यू जब हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था बग्स बनी इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया बग्स बनी को जानती है। व्हाट्सअप डॉक्टर, ये उनका फेमस फ्रेज। यस, बग्स बनी की शुरुआत आज ही से हुई थी, 27 जुलाई 1940। 13 सालों के 14 सालों के बाद पूरे 100 साल हो जाएंगे। एंड ये होता है इम्प्रेशन जब आप क्रिएट करते हैं और किसी का फेवरेट कार्टून बना देते हैं तो वो कहां तक आगे बढ़ जाता है। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें दुनिया में और भी होती हैं जो शायद कुछ काम की होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन बिलबोर्ड ने भी 1940 में अपना फर्स्ट सिंगल रिकॉर्ड चार्ट निकाला था। I'll never smile again, टॉमी डॉर्सी का ये गाना इस पे नंबर वन था। यस, याद रखिए 1940 में बिलबोर्ड ने अपना पहला फर्स्ट सिंगल रिकॉर्ड चार्ट आज ही के दिन निकाला था। एंड वहां पर गाना जो नंबर वन बना था वो था I'll never smile again by टॉमी डॉर्सी with vocals by फ्रैंक सिनात्रा। ये सब कुछ था। एंड दुनिया में कुछ चीजें पहली बार होती हैं और उन्हीं पहली बार की चीजों में एक और चीज हुई थी। अगर बात करें तो 1986 में अमेरिकन साइक्लिस्ट ग्रेग लेमोन ने पहली बार टूर डे फ्रांस से जीता था, यानी कि साइकिलिंग का वो सबसे बड़ा मेडल जो टूर डे फ्रांस के नाम से जाना जाता है, उस अमेरिकन साइक्लिस्ट ग्रेग लेमोन ने 1986 में जीता था। ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू अचीव दिस फॉर्म। वेल, मैं भी यार साइकिलिंग बहुत करता हूँ, लेकिन अब मैं साइकिल चला के कहीं जब जाता हूँ ना तो बस खाने की दुकान दिख जाती है। इसी पे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपसे थोड़ी देर में, मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। अगला गाना अगर जाओगे कहीं मेरी बातों को छोड़ के तो पछताओगे। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: धुन सवार रहती है अपने आप को फिट रखने की, बॉडी बनाने की, वो कहीं भी मौका पाते हैं जिम चले जाते हैं, अपने लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। एक ऐसी धुन मुझे भी कभी बीच में सवार हुई, मैंने कहा मैं साइकिलिंग करूंगा। साइकिलिंग की ऐसी धुन कि दिन रात साइकिल के सपने तक आते थे मुझे। फिर क्या था, साइकिल ले ली और खरीद कर साइकिल चलानी शुरू कर दी। इनफैक्ट कई दिनों तक तो मैं ऑफिस भी साइकिल से जाने लगा। अब क्योंकि वेदर ठीक हो चुका था, सितंबर मैंने 31 अगस्त बर्थडे आता है, मैंने उस दिन साइकिल खरीदी थी, मुझे अच्छे से याद है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मार्च तक मैंने झूम के साइकिल चलाई। इस दौरान थोड़ा बहुत वजन भी मोटिवेट होकर मोटा वेट से पतला वेट किया, लेकिन धीरे धीरे जब साइकिलिंग का चस्का चढ़ा तो दूर दराज भी जाने लगा। और उस चक्कर में मुझे एक लस्सी की दुकान दिखाई पड़ती थी रोज। फिर क्या है, मैंने कुछ दिनों तक तो डिसिप्लिन के चलते अवॉइड किया, लेकिन फिर आप जानते ही मैं कितने दिन किसी को इग्नोर कर सकता हूँ, अवॉइड कर सकता हूँ, मेरा दिल ही ऐसा नहीं। मैंने तुरंत लस्सी पीनी शुरू कर दी और जितना वजन गिराया था उतना एक हफ्ते में कमा लिया। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत कठिन होता है अपने आप को डिसिप्लिन में ज्यादा दिनों तक बांधे रखना, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वाकई में काबिले तारीफ हैं, आप इन तालियों के हकदार हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है दोस्त, आज की इस दुनिया में हम अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखें। इस उम्मीद से कि आप अपने इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे और कोई भी चीज़ आपके रास्ते में आए आप उसे इग्नोर करेंगे, अगर वो आपके काम की नहीं है तो ही आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा सफल बनेंगे। 89.6 मिर्ची वन पर ऐसी मजबूत मोटिवेशनल बातों के लिए मोटा वेट वाले गौरव के साथ मिर्ची पर इट्स ऑल
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: राय कितनी भी जुड़ी हो, एक पॉइंट पर आकर वो टू लेन में बदल ही जाती हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: और जिंदगी की राह भी ऐसी है भाई, जब तक हमें लगता है सीधे चल रहा है, सब कुछ सीधे ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक मोड़ आता है जहां हमें फैसला न होता है बाएं की दाएं। अली अमीन अली सार मस्त मौला गौरव आपके साथ, एंड मौसम ने खत किया हमारा इंतजार, धीरे धीरे अब शायद टेम्परेचर नीचे जाए यार।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: पिछले दिनों की प्रचंड गर्मी के बाद आज दिन का मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का लग रहा है, दिन का मिनिमम भी अराउंड 30 आएगा। बड़ी बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक अब मौसम ऐसे ही रहने के आसार है। 12 बजे के आसपास धूप अपने चरम पर होगी। हवाओं की बात करें आज ये जरूर चल रही है 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड कहा यही जा रहा है ह्यूमिडिटी का परसेंटेज यूं तो रात तक काफी ज्यादा था पर अभी भी ये बना रहेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाएगा, यह 60% के आसपास देर शाम तक आपको ह्यूमिडिटी महसूस होगी। घबराना नहीं है, पानी पीते रहना है, सूरज चाचू को कोसते रहना है ताकि जितनी जल्दी हो सके ये सब कुछ बदल जाए और मौसम अच्छा वाला आ जाए, जब हम बीच पे घूमें, दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर घूमें, कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल तो आप कान लगाकर मिर्ची को सुने, देखा तेनू मोहम्मद फैज की आवाज में मिर्ची शॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813। देखा

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: तबाही विशाल मिश्रा की आवाज में इस गाने ने भाग गई तबाही मजा दी है। लेकिन फिलहाल इनको पीछे छोड़ते हैं और हम घड़ी की तरफ बढ़ते हैं। 7:04 का टाइम।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: यार मतलब आप लोग सच में इतने शर्मीले हैं कि मेरे सामने एक्टिंग करते, मतलब एक मैसेज करिए गौरव क्या हाल है, कैसे हैं भाई यूसुफ भाई, थैंक यू, आप मुझे रोज करते हैं इस बात की खुशी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको याद नहीं दिलाना पड़ता, वो करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं। जैसे मेरे एक भाई है, ये रोज मुझे लिखते हैं, राइज एंड शाइन, द सन इज हाई, अ ब्रांड न्यू डे इज पासिंग बाय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, हैप्पी मॉर्निंग ब्रो, हैव अ ब्लेस्ड डे। ये भी इन्होंने कहा हैव अ ब्लेस्ड डे, लिखते ही लोग ये बता देते हैं कि मजा आ गया, तो इससे मुझे खुशी होती है। वेल दुखन से हमारे ये संधु भाई थे जिन्होंने बताया। इसके अलावा 5001 96 पर अब आपको जो बताने को बोल रहा हूँ उसकी तरफ लिए चलते हैं। पहचान कौन में बड़ा ही सिंपल है, यहाँ एक आवाज आती है, आपको बताना होता है हमारा गौरव ये तो फला की आवाज है।
3: देखिए मेरे छोटे भाई के बेटे हैं, बहुत ही गुणी, बहुत ही टैलेंटेड लड़के, जिसने बहुत नाम कमा लिया, सो वेरी प्राउड। और हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं आपको,
1: मैं आपको क्या बताऊं। ये कौन से सिंगर या कौन से एक्टर है जिनकी आवाज यहाँ आप सुन रहे हैं?
3: देखिए मेरे छोटे भाई के बेटे हैं, बहुत ही गुणी, बहुत ही टैलेंटेड लड़के, जिसने बहुत नाम कमा लिया, सो वेरी प्राउड। और हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं।
1: बस अब आपको बताना है कि हम आपको बता रहे हैं ये कौन है गौरव। 5001 896 5001 89 पर, 5001 896 पर जितनी जल्दी हो सके अपना जवाब भेज कर बताइए कि ये जो आवाज राइट नाउ मैंने प्ले की है वो किस इंसान की है।
3: मेरे छोटे भाई के बेटे हैं, बहुत ही गुणी, बहुत ही टैलेंटेड लड़के, जिसने बहुत नाम कमा लिया, सो वेरी प्राउड। और हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं आपको।
1: 5001 96 पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजिए हैं अब्दुल रजाक भाई, थोड़ा रिकॉर्ड करके भेजते हैं, कतर सुनता हमको अच्छा लगता है, लगता है कि लोग अपने समय निकाल के हमारे लिए एक संदेश भेज रहे हैं, वो भी वॉइस नोट में। जितनी जल्दी हो सके भेजते रहिए, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया एल से मैक्सिमम, जो अगर ड्राइव करें प्लीज डोंट राइट, बट अगर आप ऐसे इजी एक्सेस में है जहां पर आप रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं तो 5001 896 पर वॉइस नोट में अपना जवाब जरूर भेजिए। ड्राइव सेफ, अपने ऑफिस पहुंचिए एंड फिलहाल मेरे साथ मस्ती करते रहिए, आगे हम जवाब के साथ लौटेंगे। मिर्ची पर इट्स हॉट। अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, क्या गाना है यार, सुनिए आप, सुनिए इस गाने को।

0: ये सब सिर्फ गानों में इमेजिन कीजिए, यहाँ हमारे कतर में अभी दिसंबर के पहले कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। फिलहाल तो मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सज्जन इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ कॉन्टेस्ट चल रहा है इस घंटे जिसे कहते हैं
1: पहचान कौन।
0: अब पहचान कौन में आज की आवाज ये है
2: कि मेरे छोटे भाई के बेटे हैं, बहुत ही गुणी, बहुत ही टैलेंटेड लड़के, जिसने बहुत नाम कमा लिया। सो वेरी प्राउड। और हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं।
0: 5000196 पर आपका जवाब मांग रहे हैं, 10:1 का रेशियो, 10 लोग लिख के दे रहे हैं, एक कोई रिकॉर्ड करके भेज रहा है। 5000196 पर जितनी जल्दी हो सके वॉइस नोट में अपना जवाब भेज दीजिए कि गौरव जो आप सुना रहे हैं वो फला की आवाज है, हालांकि मैं लिखने वालों के आज पूरे नाम पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
2: जी, मेरे छोटे भाई के बेटे हैं, बहुत ही गुणी, बहुत ही टैलेंटेड लड़के, जिसने बहुत नाम कमा लिया। सो वेरी प्राउड। और हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं।
0: 5000196 पर मैं स्मॉल और गौरव आपका इंतजार कर रहा, जितनी जल्दी हो सके अपने जवाब भेजते रहिए एंड मेरे साथ सुनते रहिए मिर्ची पर ढेर सारे गाने, फन, मस्ती, धमाल, इट्स हॉट।
3: मिर्ची
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
5: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
5: क्या मजाक चल रही है,
4: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
6: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स,
8: एंजॉय 0% मेकिंग चार्जेस ऑन सेलेक्ट ऑर्नामेंट्स, विजिट कल्याण ज्वेलर्स टुडे, कंडीशंस अप्लाई।
9: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
3: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आए हाय आए हाय करके गाना निकल जाता है जी। फिलहाल आपके साथ जो बना हुआ है उसका नाम है मस्त मौला गौरव। आपके साथ देवी और सजनों हम इस घंटे खेल रहे हैं वो जिसे कहते हैं और ऐसे में मैंने आज जो इंसान की आवाज सुनाई वो कुछ यूं है।
1: देखिए मेरे छोटे भाई के बेटे हैं, बहुत ही गुणी, बहुत ही टैलेंटेड लड़के जिसने बहुत नाम कमा लिया। सो वेरी प्राउड ऑफ। और हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं आपको।
0: हाय हाय क्या मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जो वाकई में हर परिवार में होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगा, इतना प्यार से उन्होंने अपने बच्चों के घर में बच्चों के बारे में बोला। आइए सुनते हैं लोगों के जवाब कि किसकी है ये आवाज।
2: हाँ जी, गुड मॉर्निंग गौरव, गौरंग भाई, जिग्नेश पटेल हियर। अभी आपने जो आवाज प्ले की है वो अनु मलिक साहब की है। थैंक यू।
3: ये जो वॉइस क्लिप था अनु मलिक का था।
0: ओके ओके।
4: गुड मॉर्निंग गौरव।
0: गुड मॉर्निंग।
4: मेरा नाम अब्दुल रजाक है
0: जी। अब्दुल रजाक भाई,
4: आवाज की बात कर रहे हैं, उस वो आवाज है अनु मलिक की और वो बात कर रहे हैं अपने भाई के लड़के अरमान मलिक और अमाल मलिक की। ओके।
0: अरे बाप रे बाप भाई, क्या पहचान है, जबरदस्त। यस, दिस वॉइस वाज ऑफ अनु मलिक जो कि अपने भाई डब्बू मलिक के बच्चे अरमान और अमाल मलिक की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच बहुत सारे लोगों ने लिख के जवाब भेजा है, आप सबको भी दिल से थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा मैं यस अब्दुल करीम भाई, एंड इसके अलावा अनु मलिक नवाब जवाब लिखकर भेजा है लेकिन भाई कह रहे हैं कि कल इन्होंने बहाना बनाया था आई एम ड्राइविंग बट आज उन्होंने नहीं भेजा, कोई बात नहीं। अर्श भाई हम आपकी बात को समझते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज डोंट टाइप। मदन तीर्थ खत्री साहब आपको भी थैंक यू जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया है, एंड इसके अलावा अगर बात करें थैंक यू कहना चाहेंगे, इनका नाम अनु मलिक लिख दिया लेकिन नाम इसके आगे नहीं लिखा है, एंड इनका नाम क्या है भाई साहब, आपका नाम नहीं आ रहा लेकिन आपने जवाब तो भेज दिया अनु मलिक, बिल्कुल सही। चलो ए नाम है इनका क्योंकि इनकी प्रोफाइल पे यही पिक्चर लगी हुई है। इसके लिए थैंक यू कहना चाहेंगे हम। हरपाल संधू साहब को दुखन जिक्रित से अपना जवाब भेजा है, एंड इसके अलावा संतोष भाई को जिन्होंने अपना जवाब लिखा है अनु मलिक, इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे सुचिता को जिन्होंने लिखा है अनु मलिक। अब इसके अलावा और कोई है तो बस इतना ही कहूँगा, कभी कभी वॉइस नोट करके भी भेजो, लोग सुनते हैं उनको अच्छा लगता है कि आपकी आवाज रेडियो पर आई। हैं जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ, अमित मिश्रा मेरे भाई, जरा ओले ओले कर दो। वैसे मैं आपको बताऊं मेरा सरनेम मोले, तो ऐसे में ना कई लोग मुझे ओले ओले नहीं मोले मोले ही कहते थे।

0: अरे जान ले का पवन सिंह रूपाली जगह रुपेश की आवाज में गाना पवन सिंह वाला हमने सुनाया है। एक बार फिर से गुडी गुड मॉर्निंग आपके साथ मस्त मौला गौरव है। अब ये तो क्यूटी की फोटो से चुम्मा मिस कर रहे थे, लेकिन अगर आप मिस कर रहे हैं कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल को तो इसके लौटने की तारीख आ गई है। इस बार ये लुसेल स्टेडियम के आंगन में लगने जा रहा है। यस, लुसेल स्टेडियम प्रेनिक, यहीं पर इस बार का ये खूबसूरत कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल अलाउ किया जा रहा है। वेल कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्री रहेगा, नो टिकट रिक्वायर्ड, एंड इसके अलावा आप यहां जा सकते हैं, बहुत सारी धूम मस्ती धमाल कर पाएंगे। तारीख आ गई है 13 से 23 जनवरी 2027, यानी कि नया साल आएगा और आते ही हमारे लिए QIFF इज ऑल सेट। वेल कहा यही जा रहा है कि 2027 एडिशन जो है अब तक के पिछले सारे एडिशन से सबसे बड़ा होने वाला है। यस, कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल दिस ईयर एट लुसेल स्टेडियम, एंड यही कहना चाहता हूं कि जब वहां के प्रेनिक में लगेगा तो एक खूबसूरत सा माहौल तो तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि वो वेंडर्स जो इंटरेस्टेड है कि मेरा स्टॉल हो, और मैंने देखा है पोटैटो वाले रोल्स तो हर दूसरा स्टॉल बेचता है, उसके अलावा अगर आप खाने पीने के कोई शॉप ओन करते हैं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट करते हैं जो आपको लगता है लोगों के टेस्ट बड को एकदम जगा देता है, तो आपके पास मौका है अभी से रजिस्ट्रेशन करने का। यस, आप कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल के लिए qatartourism.com पर जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन पे जाके क्यूओएस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिए QIFF जिसकी तारीख अनाउंस कर दी गई है हमारे कतर में आ रहा है 13 जनवरी से 23 जनवरी 2027। यही लुसेल स्टेडियम में मेला लगेगा, खाने पीने वालों के शौकीनों का जमावड़ा लगेगा, और फिर सब मिलकर खाएंगे और थोड़ा वजन बढ़ाएंगे, और मोटा वेट होने के बाद फिर से मोटिवेट होकर वॉक कर उसे घटाएंगे। यही जिंदगी का दस्तूर है, साइकिल को चलाते रहना है ताकि जिंदगी की साइकिल आगे बढ़ती रहे। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: दोस्ती का कुछ सुले मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: लट्ठे दी चादर। शादियों में ये गाना इतना मम्मी लोगों ने गाया है कि पूछिए मैं। मस्त मौला गौरव। लेकिन फिलहाल तो इसे फरहाद सईद एंड कुरत अल एलेन बलूची ने गाया था एंड आपके साथ मस्त मौला गौरव ने इसे सुनाया था। लेकिन सुनाने को तो बहुत सारी बातें जो आपके कानों तक हम पहुंचाते हैं, और इसीलिए मस्त मौला गौरव कहता है कि यार लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं ना अक्सर देखता हूँ लोग कंप्लेन करके एकदम से ना डिप्रेशन में चले जाते। मैं वो हूँ जो खुद डिप्रेशन को डिप्रेशन में डाल दूँ। मैं एक चीज़ मानता हूँ, जिस दिन आप अपने आप से हार जाते हैं आपको पूरी दुनिया हारी हुई लगती है, लेकिन मन के हारे हारे मन के जीते जीत। इसलिए हमेशा सोचिए कि आप जीत रहे हैं, दुनिया की हर जंग आप जीत रहे हैं, और देखिए आप जीतते जाएंगे। मैं कभी भी नंबर कम आने पर सोचते नहीं थे कि मैं फेल होऊंगा, मुझे लगता था किसी तरह पास तो हो ही जाऊंगा, और पास होता चला गया और जिंदगी इतना आगे आ गया। लेकिन आगे आया है कतर फ्री जोन्स अथॉरिटी भी, जिन्होंने अनाउंस किया है कि कतर डायमंड एक्सचेंज QDE एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो रफ एंड पॉलिश डायमंड को ट्रेड करने के लिए आपको बेस्ट तरीके से काम आएगा। यस, विद इन रास अबू फॉन्टास फ्री जोन यू कैन नाउ कतर डायमंड एक्सचेंज के थ्रू इजीली अपने लिए आप प्रेशियस स्टोन, डायमंड जेम्स, इनकी सबकी ट्रेडिंग कर पाओगे। यस, ये एक बहुत बड़ी जगह है QFZ, जिसे कह सकते हैं कतर फ्री जोन, जिन्होंने कतर डायमंड एक्सचेंज को ग्लोबल ट्रेड ऑफ डायमंड्स के लिए खोल दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहाँ कतर में बैठकर डायमंड के बारे में बड़ी बड़ी डीलें करेंगे, एंड ये सब कुछ होगा कतर फ्री जोन अथॉरिटी के अंतर्गत। वेल, इंतजार कीजिए दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया भर से बेहतरीन चमकते डायमंड, मोना डार्लिंग, सोना डार्लिंग सबके अजीत साहब लेकर आएंगे एंड यहां पर उसकी डील हुआ करेगी। वेल, बता दें ट्रेडिंग मेंबरशिप, वॉल्टिंग सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री सर्विस, सब कुछ एक सिंगल रेगुलेटेड इकोसिस्टम QDE के जरिए, यानी कि कतर डायमंड एक्सचेंज, एक नेशनल विजन 2030 के अंतर्गत आता हुआ एक बड़ा प्लेटफॉर्म। एंड आई एम श्योर यह वो प्लेटफॉर्म है जो डायमंड ट्रेडर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और जब भी बात हीरे की आए, मैं भी आपकी जिंदगी में एक अनमोल हीरा हूं, मुझे खोना नहीं, मुझे बढ़ाते रहो, यानी कि खिलाते पिलाते रहो। 89.6 मिर्ची वन, इट्स ऑल
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
2: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
2: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
2: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कविता सेठ नीरज श्रीधर की आवाज में तुम ही हो बंधु सखा तुम ही गाना सुना दिया मसमोलो गौरव ने 8:04 के करीब का टाइम।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: जैसे होने वाली दुल्हन शादी के दिन बारात आने के इंतजार करती है उससे ज्यादा हम सैलरी आने का करते हैं। 89.6 मेरे जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ देवी और सज्जन इतना ही कहना चाहता हूँ। बड़ी ही कंगाली भरा मेरा पर्स लेकिन ये तंग हाली खत्म होगी जैसे ही 30 तारीख आएगी टुक से एक मैसेज आएगा और मेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो भेजो ना हम रेट बता देते हैं। अगर राइट नाउ की बात करें एक कतर रियाल के बदले इंडियन रुपीज 26.45 रुपए, हाँ जी 26.45 का इंडियन रुपीज का रेट है। वही श्रीलंकन रुपीज अगेंस्ट 1 कतर रियाल 92.14। जनाब पाकिस्तानी रुपीज की बात करें वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.33 76.33 पाकिस्तानी रुपीज का रेट। वही तपाई को नेपाल रुपीज का रेट दाजो 42.27 का भल छो रेट है दयान जी 42.27 का रेट छो बहनी घर भेजने लाइस दम सही टाइम छो। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी तक बात करेंगे दादा एक्ट्रा कतरे रियाल के बदले 33.97 तो 33.97 बाड़ी थी के पैसा भेजी चलो। हाँ जी मस्त मोलो गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन ऐसा हॉट अच्छे तो

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. Na vidva la murga.
1: Mirci, murga. Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल।
2: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
5: बजट टाइट तो लुलु फैशन स्टोर चलो।
6: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
5: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
6: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
5: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
6: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
5: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
4: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलु फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलु फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलु, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1। इट्स हॉट।

Discount up to 25% on economy class ticket, 50% bonus, ABS points on all tickets type privilege club program members. इसके अलावा और भी ढेर सारे क्या क्या यू नो पूरे के पूरे ऑफर्स हैं, ये आपको बताने की कोशिश की है. समर सीजन ऑफर आ गया है दोस्तों, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, कतर एयरवेज से अपनी फ्लाइट बुक करा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो कहाँ अपने थोड़े बहुत पैसे बचा रहे हैं. वेल, ये ऑफर बेसिकली 30th of July से लेकर 10th of December के बीच होने वाली बुकिंग के लिए ही एप्लीकेबल होगा. याद रखिए, सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, दीज ऑफर्स आर एज पर द स्टेटमेंट बुकिंग अंटिल जुलाई 30th इंक्लूडिंग ट्रेवल अप टू दिसंबर 10th. यानी कि 30 जुलाई से पहले आप जो भी टिकट बुक कर रहे हैं वो 10 दिसंबर से पहले की यात्रा की होनी चाहिए. उसके बाद तो पूरी दुनिया हमारे कतर में वैसे ही घूमने चली आती है इतनी खूबसूरती देख के. तो अगर आपको टिकट करानी है तो अगले कुछ दिन और बचे हैं दोस्तों. 27 तारीख आज हो गई, 28, 29, 30, ये 3 दिन में, अगले 3 दिन में जितनी टिकट बुक करनी कर लीजिए एंड दिसंबर 10th से पहले आपकी वो यात्रा होनी चाहिए. इस उम्मीद में कि आपको ये बात जब क्लेरिफाई कर दी गई तो पूरे दिमाग में बैठ चुकी है. मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है और यो हनी सिंह के दिमाग में पायल गाना बैठाता है मिर्ची थॉट.

0: यस, हाड़ी संधू की आवाज में गाना खत्म हो गया, लेकिन मेरे साथ मेरा शो मिर्ची मॉर्निंग्स अभी भी चल रहा है। एंड मैंने आपसे आप एक और कॉन्टेस्ट खेलना है। हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरे पूरे गाने याद होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है गाने के चंद शब्द सुन के लगता है यार ये कौन सा गाना था। हो सकता है वो हमारा फेवरेट गाना हो, फिर भी हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि आप बता पाएंगे ये कौन सा गाना है।
1: रातों ने किए हैं कुछ इरादे,
0: बस बस बस इतना ही है ये गाना, इतना ही है आपको बताना है ये कौन सा गाना है।
1: रातों ने किए हैं कुछ इरादे,
0: 5000196 पे बता दे कि ये गाना कौन सा है। 5000196 पर आप बता सकते हैं कि ये जो गाने की छोटी सी धुन में सुना रहा हूँ ये कौन सा गाना है।
1: रातों ने किए हैं कुछ इरादे,
0: 5000196 पर मस्ट फॉलो गौरव, आपके जवाबों का इंतजार कर रहा है। अगर आपके कान तेज हैं और दिमाग उससे भी ज्यादा तेज है तो जरा बता दीजिए कि मैं गौरव आप जो ये गाना प्ले कर रहे हैं वो फला गाना है। जितनी जल्दी हो सके करिए। ये किसी भाई साहब ने कॉल करना शुरू कर दिया है। भैया पहले तो मैं रेडियो बोल रहा हूँ, अभी आपका कॉल नहीं उठा पाऊंगा। और दूसरा ये कि आपको बताना है तो 5000196 पर वॉइस नोट जरूर करके भेजिए ताकि पूरा कतर सुने कि ये कौन सा गाना है। मस्ट फॉलो गौरव आपके साथ मिर्ची इट्स हॉट।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
2: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बिल्लो नी तेला लाल गगला गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: वैसे बिल्लो हम आपको लेकर जाएंगे जहां पर स्वीट्स ही स्वीट सब खाएंगे। अरे डेट फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, हमारे कतर के इस स्क्वायर सूक वाकिफ में चल रहा है इस वक्त वो डेट फेस्टिवल जिसका इंतजार तो हम सब कर रहे थे, अब आ गया है तो जाना भी है, ये भी ठान लिया। इन सब के बीच मेरे साथ इस घंटे कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां पर मैंने पूछा है बताओ ये कौन सा गाना है।
2: रातों ने किए हैं कुछ इरादे,
0: 5000186 पे बता दे जितनी जल्दी हो सके कि ये कौन सा गाना है जो इस वक्त मैंने यहाँ मिर्ची पर आपको थोड़ी सी झलक में सुनाया और पूछ रहा हूँ इसको बताइए कौन सा गाना है।
2: रातों ने किए हैं कुछ इरादे।
0: मैं सच कहूँ एक बंदा है जिसने सबसे पहले बिना समय लगाए ये गाने के बारे में बता दिया है। मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर लो। 5000186 पर अगली बार जब आपके साथ लौट रहा हूँ मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्च जीवन पर अलविदा नहीं कहेंगे, अभी आखिरी घंटा बचा है। मस्त मौला गौरव ने सवाल किया था कि क्या आप इस गाने को पकड़ सकते हो।
1: रातों ने किए हैं कुछ इरादे,
0: मुझको ये गाना तू बता दे कि कौन सा गाना ये हमने मिर्ची पर सुनाया है। जवाब आ गया है।
2: गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
2: द सॉन्ग क्लिप व्हाट यू प्लेड वाज फ्रॉम बैंग बैंग,
0: बैंग बैंग, यस, ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग का गाना। अवनीश सिंह ने भी कहा है बैंग बैंग, मैंने कहा है वॉइस नोट इफ पॉसिबल, लेकिन भाई का जवाब नहीं आया, मतलब भाई सोच रहा है। फरक ने कहा है बैंग बैंग। इसके अलावा थैंक यू ना चाहूंगा सिद्धार्थ को जिन्होंने कहा है बैंग बैंग, आदिल भाई जिन्होंने कहा है बैंग बैंग, जाकिर भाई जिन्होंने कहा है बैंग बैंग, मयूरा ने लिखा है बैंग बैंग। इसके अलावा बात करें तो यस, अभिषेक ने लिखा है बैंग बैंग, निखिल ने लिखा है बैंग बैंग। कुल मिलाकर यार लोग पकड़ लेते हैं, ये बड़ी बात है यार। हमें तो लगा था कि यहाँ फंस जाएंगे, मतलब इतना गाना सुनाते हैं उसके बावजूद हम इस लाइन तो नहीं पकड़ पाते।
1: रातों ने किए हैं कुछ इरादे,
0: आए तुम तो हम वादे निभा दे, ऐसा लगा कि ये गाना कोई पुराना और दूसरा गाना है। खैर चलिए जी, अब सही जवाब आ गया, आगे बढ़ते हैं, इस घंटे को खत्म करते हैं। मिर्ची
3: चार बॉल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
5: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
6: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
5: नहीं ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
4: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
8: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
9: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
10: Our business is our business, none of your business.
11: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
12: entertainment. Qatar ka number one radio station.
13: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है, सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
2: राख, राख।

0: कहर कूड़े, गुरु रंधावा ने गाना गा दिया कूड़े। एंड फिलहाल गुरु रंधावा अगर गाना गाने की ड्यूटी निभा सकता है तो मैं समय बताने की मिर्ची। क्लॉक का टाइम 9:03 सुबह के।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और भाई डिजिटलाइजेशन का जो एक स्टैंडर्ड है वो कतर में हर दिन के साथ बढ़ रहा है, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। भाई अब कतर कस्टम्स अथॉरिटी ने लॉन्च कर दिया है अल नदीब ऐप। हाँ जी, ये एक सॉलिड एनहांस वर्जन है। अगर आप कतर कस्टम्स अथॉरिटी की बात करें तो ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट है, खासकर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये नया यूआई इतना मॉडर्न और कस्टमाइज बना दिया गया ना कि सब कुछ बड़ा ही फ्लेक्सिबल एंड इतना फास्ट हो जाएगा इसके थ्रू कि आपके लिए भी ईजी हो जाएंगी चीज़ें। या यहाँ पर एक स्मार्ट डैशबोर्ड बनाया जिसमें ई सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाएगा और रियल टाइम ट्रैकिंग भी होगी आपके सारे रिक्वेस्ट और एक्टिविटीज़ की। कोई डिले विले नहीं होना और बकायदा हर काम एकदम राइट टाइम पर भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंस्टेंट समरीज और रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके सामने होंगे और ये डिसीजन मेकिंग को और आसान बनाएंगे, चीज़ों को और जल्दी लाइनअप करेंगे। तो मतलब क्लियरली भैया हमारा कतर जो है डिजिटलाइज हो रहा है, टेक अपडेट हर दिन के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लाइफ को और कैसे सिंपल बनाया जाए डिजिटल दुनिया में, ये सब कुछ किया जा रहा है। और अब आपकी लाइफ में ये सारे अपडेट्स कौन लेकर आता है? मस्मौला गौरव। ऐसे बस इतना ही कहूँगा, ये वाकई में गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए बहुत ईजी हो गया है एंड सबका काम आसान हो हम तो यही कहते हैं। और कंप्यूटर का सही इस्तेमाल, डिजिटल की दुनिया का सही इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ये हम सब चाहते हैं हो। बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को स्कैम में फंसाते हैं, उनके पैसे ऐंठते हैं, वो काम बस गड़बड़ है। बाकी टेक्नोलॉजी से भैया दुनिया और फास्ट तो हो रही है पर कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट बन के जो लूट रहे हैं उनको बंद होना जरूरी है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escava la buscaba la sacaba la burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा, उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घर पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पा रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
3: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
7: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
9: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
10: दोनों मिलेगा।
11: का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
12: 89.6
13: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कानून के खिलाफ जाओगे तो अपनी दुकान पे ताला लगवाओगे। और कतर में तो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का कि अरे यहाँ हो जाएगा, सब चलता है, यहाँ ताला ही लगता है।
1: #974
0: बता दूं, कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी रिप्रेजेंटेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर दिया है दो ट्रेवल कंपनीज एंड कार्गो एजेंसीज को। यस, एयर कार्गो एजेंसीज, एंड इनके डी रजिस्ट्रेशन की बात कर दी है। 10 ऐसे हैं जो नॉन कंप्लायंस है, उन सब पे ताला लग गया हमेशा हमेशा के लिए। यस, हम आपको बता दें, सेक्टर कोई भी हो, कतर में सब कोई नियम कानून से चले, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। कहीं भी किसी तरह की लापरवाही ना हो रही हो, कहीं भी किसी तरह का इलीगल काम ना हो रहा हो, इसको ध्यान रखा जाता है। और जब ऐसे वायलेशंस आते हैं तो इंस्पेक्शन के दौरान इस पूरे कैंपेन में दे मेक श्योर कि अप्रूव्ड लॉज और रेगुलेशंस अगर फॉलो एजेंसीज या किसी भी कंपनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ताला लगाओ, खत्म करो इनका खेल। एंड फाइनली ऐसे बहुत सारे लोगों को क्लोजर नोटिस आ गया है। यस, कतर में शटडाउन हो गए, डी रजिस्टर हो गए नॉन कंप्लायंट ट्रेवल एंड एयर कार्गो एजेंसीज। और वो लोग जो कहते हैं मां क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता यार, ये होता है जब आप कुछ गलत करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, आप जिस मुल्क में रहिए उसके कानून की इज्जत कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। और वो मुल्क जब आपकी तरक्की में आपका हिस्सा मांग रहा है तो आप उसमें अपनी तरक्की भी खोज रहे हैं, तो उसके नियम कानून को फॉलो करना भी तो आपके हिस्से आता है। आई एम श्योर अगली बार बाकी कंपनीज के लिए सबक है। और ऐसी कोई भी चीज कहीं भी दिखे जरूर पुलिस को रिपोर्ट किया करिए, इससे आप कई लोगों को उनके चंगुल में फंसने से भी बचाते हैं। और कुछ अच्छा काम अगर इस तरह से हो जाए तो पढ़े लिखे हमारे होने का कुछ तो फायदा दुनिया को मिलेगा। 89.6 मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

तेरा रंग बल्ले बल्ले, लेकिन एक रंग बीते सैटरडे बड़ा इम्पोर्टेंट था, दैट वॉज पर्पल। यस, हमारे कतर में हर साल अब सेलिब्रेट किया जाता है द लास्ट सैटरडे ऑफ जुलाई मंथ एज अ पर्पल सैटरडे। पर्पल सैटरडे क्यों होता है? बेसिकली ये इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देता है, जो स्पेशली एबल्ड पीपल है, मैं उन्हें डिसेबल नहीं कहूँगा, मैं उन्हें स्पेशली एबल्ड पीपल बोलूँगा, उनको ये एक तरह से इंक्लूड करता है और उनके लिए सारे ऑफर्स एंड सर्विसेज हर तरफ थे। और बता दूं 80 आउटलेट्स ऐसे थे जो कि इसमें साथ आए थे। यस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने बताया है कि उन्होंने QR कोड के जरिए जब ये पता किया कि कितने आउटलेट्स इसका हिस्सा बने पर्पल सैटरडे इनिशिएटिव का, तो इट केम आउट टू बी 80, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये तो शुरुआत है। हर साल जैसे जैसे ये सेलिब्रेशन बड़ा होता जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कतर में ये 80 से 800 स्टोर्स तक पहुंचेगा। यस, पर्पल सैटरडे इनिशिएटिव लास्ट सैटरडे जुलाई को होता है एंड फ्रॉम जुलाई 25th टू अगस्त 1st इसे बहुत जगह अभी भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने, कतर टूरिज्म ने भी मिलकर इसे एक तरह से रिप्रेजेंट किया है विजिट कतर। एंड जिस तरह से ये सैटरडे बड़ा होता जा रहा है पर्पल सैटरडे, मुझे पूरी उम्मीद है पूरी दुनिया इस फॉर्मेट को अच्छा मानकर पूरा मंथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि स्पेशली डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं ना, उन्हें दुनिया में ये दिखाना कि आप हमारे जैसे नॉर्मल हो, ये एक बहुत बड़ा काम है और उस चैलेंज को हमें पूरा करना है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
4: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन।
10: इट्स हॉट।

0: नयन मटक्का किसी से भी कीजिएगा, लेकिन सूरज चाचू की आंखें में देखने की हिम्मत न कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए फिलहाल वो अपने ब्राइटनेस के चमत्कार के साथ हम सबको चमकान दिखा रहे हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: दिन का मैक्सिमम तापमान जहां पहुंचेगा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहीं मिनिमम अराउंड 30 रहेगा। और इसलिए कह रहा हूं सूरज चाचू से थोड़ा बच के, ह्यूमिडिटी एट 41%। जो लोग चश्मा पहनते हैं वो अपने साथ में हैंडकरचीफ बोले तो रुमाल जरूर रखें, बार बार पूछने की जरूरत पड़ेगी अगर आप अंदर बाहर यानी कि ठंडी से गर्म में आएंगे तो, क्योंकि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज काफी हाई है। वेल कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप हाइड्रेटिंग योर बॉडी, इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक रहेगा। मस्त मौला गौरव कल मिलेगा आपको फिर से, कब कहां कौन से शो में, इसके लिए तो इंतजार की मिर्ची पर मी सेंग चढ़ा हुआ है मिर्ची इट्स हॉट।

0: weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल।
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
0: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
7: Hello Shops, our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
8: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: बाबू मोशाय, इसको बोलते हैं पेडेस्टल इफेक्ट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अच्छा, वो वाली फीलिंग याद है, मानो आपका क्रश एकदम से सामने आ जाए और आपसे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर दे और आपकी होती है बोलती बंद। बस उसी फीलिंग को कहते हैं पेडेस्टल इफेक्ट, यानी आप किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और वो एकदम से सामने आ जाता है तो आप ना कंपेरेटिवली अपने आप को ऑर्डिनरी समझने लगते हो उस इंसान से, एंड दैट इज वाई ये परसीव्ड गैप जो है वो कॉन्वर्सेशन को इंटिमिडेटिंग बना देता है। एंड मैं अचानक से ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही राघव जुयाल के साथ हुआ। बेसिकली उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम है भाई तेरा स्टार है और इसके ही प्रमोशंस के टाइम मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी एक और अपकमिंग फिल्म किंग के बारे में एक एनेक्डोट शेयर किया। एंड टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्चुअल किंग बोले तो शाहरुख खान इसमें लीड रोल निभाते नजर आ रहे हैं अलॉन्ग विद हिज डॉटर सुहाना खान, जो इसी फिल्म के साथ बिग स्क्रीन डेब्यू कर रही है अपना। एंड उनके अलावा मूवी में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत, जैकी श्रॉफ, अर्शद वारसी, अभय वर्मा एंड राघव जुयाल नजर आएंगे। और राघव जब इस फिल्म की शूटिंग के एक सीन के दौरान शाहरुख खान के सामने आए तो भाई वो एकदम से ब्लैंक हो गए एंड ही फॉरगॉट हिज डायलॉग। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल ही इज द शाहरुख खान, जिनकी ऑरा फार्मिंग इस लेवल की है कि इंडस्ट्री में आगे आने वाले 7 पुश्ते भी शायद उस ऑरा तक ना पहुंच पाए। एनीवे, आपकी जिंदगी में ये पेडेस्टल इफेक्ट कब आता है और किसको देख के आता है बताइएगा जरूर। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या इंस्टा पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Iskabana puskabana sakabana. Rambala. Murga, murga. Navirvala murga. Energy murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Ben ji.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड. ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटे, चुप.
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
2: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका.
1: तो उतार लीजिए.
2: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
2: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने. देखिए,
2: हाँ, सुसु ही करा. चल,
1: उतार दीजिए.
2: एक सेकंड, उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा. देखो आंटी कर रही है. क्लैपिंग करो.
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए.
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
1: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण की बात करूंगी, क्योंकि इसका ट्रेलर हो चुका है पोस्टपोन। सो नमित मल्होत्रा प्रोडक्शंस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है दैट सोनी पिक्चर्स हैज कम ऑन बोर्ड फॉर ग्लोबल रिलीज ऑफ द मूवी आउटसाइड इंडिया, एंड इसी की वजह से इसके ट्रेलर को अभी के लिए पोस्टपोन किया गया है। बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश एंड रवि दुबे पिवटल रोल्स में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट इज सेट टू रिलीज ऑन दिवाली 2026। बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। सनी देओल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बटवारा 1947 को CBFC ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। ये पहली बार हुआ है जब सनी देओल की कोई फिल्म अडल्ट्स ओनली रेटिंग के साथ पास की गई है। बाकी द मूवी सेट टू रिलीज ऑन द 14th of August, जो 2 घंटे 25 मिनट और 34 सेकंड की होने वाली है, यानी कि 145.34 मिनट्स लॉन्ग। आहान शेट्टी और शर्वरी वाग का कॉम्बिनेशन, भाई आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो आहान शेट्टी की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी इन बॉर्डर 2। ऑल दो इन दोनों एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, और इस फिल्म को उसका रिलीज डेट मिल चुका है, विच इज 24th of March नेक्स्ट ईयर। इट इज गोइंग टू बी अ रोमांटिक एक्शन ड्रामा, जिसमें इन दोनों एक्टर्स के अलावा बॉबी देओल और ऐश्वरी ठाकरे भी नजर आएंगी। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
4: बहुत कुछ होगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको इस गेम को खेलने के लिए पहले मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम्स में अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इन सवालों के सिलसिले की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी। कैसे है सर?
3: बढ़िया, नमस्कार जी।
0: तो सर एक बार फिर से आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाया जाए। तो मेरा पहला सवाल है, अनिल कपूर की फिल्म जिसमें वो घड़ी पहन के गायब हो जाते हैं,
3: मिस्टर इंडिया।
0: मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो कौन है?
3: अमरीश पुरी।
0: अमरीश पुरी की फिल्म जिसमें उनके पास टॉमी नाम का एक पग होता है,
3: टॉमी नाम का पग, ये मुझसे शादी करोगी।
0: बहुत बढ़िया, मुझसे शादी करोगी में विकेट सनी कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो करोड़ों की बंदूकें भंगार में बेच देते हैं,
3: ये फिर हेरा फेरी।
0: फिर हेरा फेरी में गोरिल्ला से केला छीन के कौन खाता है?
3: जॉनी लिवर।
0: जॉनी लिवर का कैरेक्टर किस फिल्म में भूला भूलते हैं?
3: तो गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में गोपाल कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें लंगड़ा त्यागी उनके गैंग मेंबर होते हैं,
3: ओमकारा।
0: ओमकारा में लंगड़ा त्यागी कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान की फिल्म जिसमें परी होती है,
3: परी होती है मतलब परिणीति चोपड़ा?
0: नहीं नहीं, परी परी लेजिट परी।
3: नहीं पता,
0: चलिए कोई बात नहीं, उसका जवाब तो आगे वाले प्लेयर हमें दे देंगे, बट अभी मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय, अगर आपके अंदर का फिल्मची भी थोड़ा फोमो में जा रहा है, देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर डीएम कीजिए एंड वी विल कनेक्ट टुगेदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नाटी नाटी, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, जिसकी शुरुआत आज हमने दीपक जी के साथ की। सो बेसिकली आपको ना मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। तो आज जैसा कि मैंने कहा, दीपक जी ने शुरू किया था बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ सत्यम जी है। आर यू रेडी सर?
3: ओके, आई एम रेडी, लेट्स ट्राई, लेट्स गो फॉर इट।
0: ऑल राइट, सो सैफ अली खान की फिल्म जिसमें परी होती है,
3: थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक।
0: क्या बात है, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में परी कौन है?
3: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें हीरो एक दिन का सीएम बनता है?
3: नायक।
0: नायक में टीवी एंकर कौन है?
3: अनिल कपूर, सॉरी।
0: अनिल कपूर किस फिल्म में घोड़े पे गधे की पेंटिंग बनाते हैं?
3: अरे वो वेलकम।
0: वेलकम में मजनू भाई की बहन कौन है?
3: मजनू भाई की बहन कटरीना कैफ।
0: कटरीना कैफ किस फिल्म में पॉलिटिशियन बनी है?
3: राजनीति।
0: यस, राजनीति में उनको किससे प्यार होता है?
3: उसको, रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर की फिल्म जिसमें वो संजय दत्त बने हैं?
3: संजू।
0: संजू में रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड कौन है?
3: कटरीना का हस्बैंड।
0: नाम तो बता दो सर।
3: अरे वो कौशल।
0: हाँ,
3: विकी, विकी, विकी कौशल, विकी कौशल।
0: यस, विकी कौशल की फिल्म जिसमें उनकी वाइफ को घर जाना है?
3: राजी राजी राजी राजी।
0: राजी में अंडरकवर रॉ एजेंट कौन है?
3: अंडरकवर वो खुदी थी, आलिया भट्ट।
0: यस, आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो बिहार से आई हुई हॉकी प्लेयर बनती है?
3: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में टॉमी सिंह कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर किस फिल्म में एंगर इश्यूज वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन है?
3: कबीर सिंह।
0: कबीर सिंह में प्रीति कौन है?
3: कियारा आडवाणी।
0: कियारा आडवाणी की फिल्म जिसमे सरोगेसी और स्पर्म मिक्स हो जाते हैं?
3: द गुड न्यूज।
0: गुड न्यूज में दूसरी हीरोइन कौन है?
3: करीना कपूर खान।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो एक आत्मा बनी है?
3: अरे वो तलाश तलाश तलाश।
0: क्या बात है, इसी के साथ हमारी भी तलाश कंप्लीट हुई फॉर आवर सेकंड मिर्ची फिल्म ची।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो अगर आपको फोमो हो रहा है, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, आपको बस मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना है, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बड़े बड़े फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स तो होते रहते हैं सेनोरिटा।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। ओके डोंट किल मी फॉर दैट, बट आई एम अ डाई हार्ड शाहरुख फैन। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें बड़े बड़े फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स की, तो वो जनरली तो नहीं होते, बट जब होते हैं तो हमारे दिल को छू जाते हैं यार। सो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट ग्रैंडर, जो बहुत सारे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के साथ आती है, बहुत बड़े बड़े सेट्स के साथ एंड बड़ी बड़ी स्टोरीज के साथ आती है। लेकिन एवरी वंस इन अ व्हाइल वी आर लकी इनफ टू फाइंड अ कैरेक्टर जो एक कैटलिस्ट के जैसे काम करता है इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंड्रेला की बात करें तो उसमें फेरी गॉड मदर जो है, भले ही उनकी ग्रैंड एंट्री नहीं होती, बहुत सारे डायलॉग्स नहीं होते, स्क्रीन टाइम नहीं होता, बट वो एक छोटे से टाइम के लिए आके ही उस पूरी कहानी को मैजिकल बना जाते हैं। और कुछ ऐसे ही बॉलीवुड फिल्मों के कैरेक्टर की आज हो रही है बात थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वील टॉक अबाउट फिल्म मसान से पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के बारे में। भाई साहब, ये एक्टर तो अपने सटल कैरेक्टराइजेशंस के लिए मशहूर हैं ही, और मसान फिल्म में इनका जो प्रेजेंस है, इट इज अ वैलिडेशन फॉर दैट। इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है संध्या का, वो एक एंड्योरिंग कैरेक्टर है जो देवी को सोसाइटी के परसेप्शन से ऊपर देखता है, उससे अलग देखता है। जिस तरीके से वो सिंपली आते हैं और एक सेंस ऑफ वार्म्थ छोड़ के जाते हैं, फॉर इंस्टेंस जब वो देवी से अपने पापा की बनाए हुए खीर की बात करते हैं एंड इंसिस्ट्स हर टू इवन ईट इट, माय हार्ट वाज फुल एट दैट टाइम, आई एम टेलिंग यू। खैर, अभी ऐसे ही और भी कुछ कैरेक्टर्स की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी।
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
3: मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: छोटी छोटी चीजों में अलग ही मजे होते हैं।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। हाँ जी बाबू मोशाय, अब वो आपकी लाइफ हो जिसमें छोटी छोटी खुशियां आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग लेवल पे लेकर चली जाएं, या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज के कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स जिन्होंने उस मूवी को एक अलग लेवल दे दिया। वेल, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ वैसे ही कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म मसान से पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म लक बाय चांस से शाहरुख खान के कैरेक्टर के बारे में, जो बस एक सीन के लिए इस फिल्म में आते हैं, और फरहान अख्तर के कैरेक्टर को जो मच नीडेड रियलिटी चेक होता है वो दे के चले जाते हैं। बेसिकली उस सीन में वो फरहान अख्तर को समझाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने लाइफ में आने वाले हर इंसान को वैल्यू करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो आपकी लाइफ में उस वक्त थे जब आप कुछ भी नहीं थे। क्योंकि जब आप सक्सेस पा लेते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं तो आपका सक्सेस इनकम्प्लीट है यार। बस इसी चीज को फरहान अख्तर समझ जाते हैं, जो इस पर्टिकुलर सीन के बाद एकदम से चेंज हो जाते हैं। चलो मूविंग ऑन, नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म तमाशा से पीयूष मिश्रा के कैरेक्टर के बारे में। एंड कसम से दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स इन द लिस्ट। ही वाज अ फैंटास्टिकल कैरेक्टर जो इनडायरेक्टली वेद को सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे, उस राह पे, उस रास्ते पे भेजता है। और जिस लेवल के कहानीकार इन रियल लाइफ पीयूष मिश्रा हैं, बस उसकी झलक इस फिल्म में भी दिखा दी है उन्होंने। खैर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स की बातें अभी बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: माय डियर बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट ग्रैंडियर। बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े कैरेक्टर्स और बड़े बड़े डायलॉग्स, बड़े बड़े सेट्स, सब कुछ बड़ा बड़ा बड़ा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जब एक छोटा सा कैरेक्टर एक छोटे से टाइम पे स्क्रीन पे आके बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाए तो आप सारे ग्रैंडियर को भूल जाते हैं। बस कुछ वैसे ही कैरेक्टर्स की आज हो रही है बात थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म मसान से पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के बारे में। नंबर दो पे हमने बात की लक बाय चांस से शाहरुख खान के कैमियो के बारे में। नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड तमाशा से पीयूष मिश्रा के स्टोरी टेलिंग के बारे में। चलो अब नंबर चार पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से अमिताभ बच्चन के कैमियो के बारे में। सो वो मोमेंट याद है जब शशि प्लेड बाय श्रीदेवी मैम यूएस के लिए फ्लाइट लेती हैं। Meanwhile, बहुत सारी चीजें उनके साथ ऑलरेडी हो जाती हैं, जैसे उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो उनका काफी ज्यादा मजाक भी बन जाता है। एंड व्हेन शी फाइनली एंटर्स द फ्लाइट वो काफी ज्यादा इंटिमिडेटेड होती है विद इंग्लिश फिल्म्स, और उसी वक्त अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की एंट्री होती है एंड जिस तरीके से वो इस फीलिंग से उनको ओवरकम कराते हैं बाय ट्रांसलेटिंग द एंटायर मूवी सो फनीली इनटू हिंदी वाज जस्ट लाइक अ वार्म हग। कभी कभी आपके लाइफ में भी एक ऐसा इंसान होता है ना जो आपकी ऐसी फीलिंग्स को ऐसे चुटकी बजाते गायब कर देता है। बस कुछ वैसे ही कैरेक्टर्स की आज बात हो रही है यार। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे बात करते हैं वन ऑफ माय सुपर डुपर फेवरेट्स कैमियो ऑफ जॉनी लिवर इन द मूवी चलते चलते। मतलब फिल्म में हम जब पहले जॉनी लिवर को नोटिस करते हैं तो वो एक पियक्कर टाइप्स नजर आते हैं जो राज यानी शाहरुख खान के घर के बाहर मंडराते रहता है। इनफैक्ट वो शाहरुख खान से बार बार बोलते हैं कि ठीक है आ मेरे पास बैठ, बिकॉज इट गेट्स लोनली फॉर हिम। लेकिन शुरुआत में तो हम ऐसा नहीं देखते, लेकिन जब राज का लो हिट होता है इन द लाइफ एंड व्हेन ही सिट्स विद नंदू जो जॉनी लिवर का कैरेक्टर है, उसको कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं विच रेजोनेट्स विद थिंग्स दैट ही इज डीलिंग विद हिज ओन रिलेशनशिप। यहीं पे तो कमाल हो जाता है और फिल्म एकदम से पलट जाती है। सो माय डियर बाबू मोशाय, हमारी ये जो जिंदगी है ना वो भी हमारी अपनी पर्सनल फिल्म है, तो ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ से मिस आउट मत होने देना। बाकी अभी के लिए अच्छे वाले गाने एंजॉय कर लो यार। राइट हियर ऑन मिर्ची यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण की बात करूंगी, क्योंकि इसका ट्रेलर हो चुका है पोस्टपोन। सो नमित मल्होत्रा प्रोडक्शंस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है दैट सोनी पिक्चर्स हैज कम ऑन बोर्ड फॉर ग्लोबल रिलीज ऑफ द मूवी आउटसाइड इंडिया, एंड इसी की वजह से इसके ट्रेलर को अभी के लिए पोस्टपोन किया गया है। बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश एंड रवि दुबे पिवटल रोल्स में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट इज सेट टू रिलीज ऑन दिवाली 2026। बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। सनी देओल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बटवारा 1947 को CBFC ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। ये पहली बार हुआ है जब सनी देओल की कोई फिल्म अडल्ट्स ओनली रेटिंग के साथ पास की गई है। बाकी द मूवी सेट टू रिलीज ऑन द 14th of August, जो 2 घंटे 25 मिनट और 34 सेकंड की होने वाली है, यानी कि 145.34 मिनट्स लॉन्ग। आहान शेट्टी और शर्वरी बाग का कॉम्बिनेशन, भाई आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो आहान शेट्टी की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी इन बॉर्डर 2। ऑल दो इन दोनों एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, और इस फिल्म को उसका रिलीज डेट मिल चुका है, विच इज 24th of March नेक्स्ट ईयर। इट इज गोइंग टू बी अ रोमांटिक एक्शन ड्रामा, जिसमें इन दोनों एक्टर्स के अलावा बॉबी देओल और ऐश्वरी ठाकरे भी नजर आएंगी। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इमरजेंसी हेल्पलाइन?
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
1: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Murli je tu teri saare.

एक ऐसी फिल्म जो मात्र 40 दिनों में शूट हो गई। बॉलीपीडिया तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। हाँ हाँ, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी दम लगा के आयशा, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में बाबू मोशाय, डायरेक्टेड बाय शरद कटारिया। और इसी फिल्म के साथ भूमि पेडनेकर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। वहीं उनके ऑपोजिट नजर आए थे मेल लीड के तौर पे नन अदर देन आयुष्मान खुराना। एंड यस, जैसा कि मैंने बोला, ये फिल्म मात्र 40 दिनों में शूट हो गई थी। इनफैक्ट इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है ना, इसके रिलीज के 7 साल पहले ही लिख ली गई थी, बोले तो साल 2007 में ही। और तो और, फिल्म के लीड रोल के लिए 100 से भी ज्यादा महिलाओं ने ऑडिशन दिया था, उसमें से हमारी भूमि पेडनेकर वॉज सिलेक्टेड। और इस फिल्म के लिए उन्होंने 15 किलो से ज्यादा वेट पुट ऑन किया था। और बताओ, आज के डेट में जब इस बंदी ने वेट लूज कर लिया है तो उसके लिए भी इनको ट्रोल किया जाता है कि अरे अपने रिब्स हटवा लिए हैं या फिर दवाई खा के अपने आप को पतला कर रही है। मतलब एक महिला की जिंदगी किसी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकती हमारे यहाँ, इज वॉट आई हैव नोन विद माई ओन एक्सपीरियंसिस एज वेल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गाके सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने हैं
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात सुन पहले बात सुन. और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: सर. बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Sweet के साथ only on Mirchi. It's hot. ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
1: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति और आज डिस्कस कर रही हूँ एक बाइट खाने वाले लोगों की कैटेगरी, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अगर बोलते हैं कि यार मुझे बस एक बाइट ही चाहिए तो उनका वो एक बाइट ही होता है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी हो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के कीड़े ने इनको बहुत ही गलत जगह पे काट रखा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि भैया बस एक बाइट, हाँ बस टेस्ट करने के लिए, हाँ ठीक है, और उसके बाद जैसे ही एक बाइट खाएंगे अच्छी है यार, अच्छी है, अरे जरा और खिलाना, और फिर धीरे धीरे घूमते फिरते आपसे ज्यादा आपका खाना ये इंसान एक बाइट के नाम पे खा जाता है। दैट्स व्हाई आई सेड भगवान करे इस दूसरी कैटेगरी वालों के पेट की भूख थोड़ी जल्दी शांत हो जाए। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: There's a first to everything out there.
1: OTT and chill.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति और बात कर रही हूँ अबाउट दिस रियलिटी शो द अलायंस की, क्योंकि उसमें सोहेल खान है भैया और सोहेल खान ने अभी रिसेंटली एक अपडेट दिया है अपनी जिंदगी के बारे में. सो मैं बात कर रही हूँ अबाउट द टास्क जहाँ अलायंस कॉम्स रूम में जाके सिस्टम का दिया हुआ प्रॉम्प्ट लेके एनिमल्स गेस कर रहे थे और उसमें उनको टाइप करना था कि भाई वो कौन सा एनिमल है. एंड दैट वॉज द मोमेंट जब सोहेल खान एकदम से ना अकबका से गए थे, अलबला से गए थे, बोले तो उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी कीबोर्ड टच तक नहीं किया था. यस, इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब इस शो में सोहेल खान ने अपनी लाइफ में पहली बार कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल किया. तभी मैंने कहा देयर इज अ फर्स्ट टू एवरीथिंग आउट देयर. तो अब आप बताइए, क्या लेटली आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया है जहां आपने भी कोई चीज पहली बार की हो? डू लेट मी नो अबाउट दैट मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया। सॉरी
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: बाबू मोशाय, इसको बोलते हैं पेडेस्टल इफेक्ट।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अच्छा, वो वाली फीलिंग याद है, मानो आपका क्रश एकदम से सामने आ जाए और आपसे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर दे और आपकी होती है बोलती बंद। बस उसी फीलिंग को कहते हैं पेडेस्टल इफेक्ट, यानी आप किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और वो एकदम से सामने आ जाता है तो आप ना कंपैरेटिवली अपने आप को ऑर्डिनरी समझने लगते हो उस इंसान से, एंड दैट इज वाई ये परसीव्ड गैप जो है वो कॉन्वर्सेशन को इंटिमिडेटिंग बना देता है। एंड मैं अचानक से ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही राघव जुयाल के साथ हुआ। बेसिकली उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम है भाई तेरा स्टार है और इसके ही प्रमोशंस के टाइम मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी एक और अपकमिंग फिल्म किंग के बारे में एक एनेक्डोट शेयर किया। एंड टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्चुअल किंग बोले तो शाहरुख खान इसमें लीड रोल निभाते नजर आ रहे हैं अलॉन्ग विद हिज डॉटर सुहाना खान, जो इसी फिल्म के साथ बिग स्क्रीन डेब्यू कर रही है अपना। एंड उनके अलावा मूवी में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत, जैकी श्रॉफ, अर्शद वारसी, अभय वर्मा एंड राघव जुयाल नजर आएंगे। और राघव जब इस फिल्म की शूटिंग के एक सीन के दौरान शाहरुख खान के सामने आए तो भाई वो एकदम से ब्लैंक हो गए एंड ही फॉरगॉट हिज डायलॉग। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल ही इज द शाहरुख खान, जिनकी ऑरा फार्मिंग इस लेवल की है कि इंडस्ट्री में आगे आने वाले 7 पुश्ते भी शायद उस ऑरा तक ना पहुंच पाए। एनीवे, आपकी जिंदगी में ये पेडेस्टल इफेक्ट कब आता है और किसको देख के आता है बताइएगा जरूर। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या इंस्टा पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

जैसे होने वाली दुल्हन शादी के दिन बारात आने के इंतजार करती है, उससे ज्यादा हम सैलरी आने का करते हैं। 89.6 में जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ देवी और सज्जन, इतना ही कहना चाहता हूँ। बड़ी ही कंगाली भरा मेरा पर्स, लेकिन ये तंग हाली खत्म होगी जैसे ही 30 तारीख आएगी। टुक से एक मैसेज आएगा और मेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो भेजो ना, हम रेट बता देते हैं। अगर राइट नाउ की बात करें, एक कतर रियाल के बदले इंडियन रुपीज 26.45 रुपए, हाँ जी 26.45 का इंडियन रुपीज का रेट है। वही श्रीलंकन रुपीज अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 92.14। जनाब पाकिस्तानी रुपीज की बात करें, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.33 76.33 पाकिस्तानी रुपीज का रेट। वही तपाई को नेपाल रुपीज का रेट दाजो 42.27 का भल छो रेट है दयान जी 42.27 का रेट छो। बहनी घर भेजने लाइस दम सही टाइम छो। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी तक बात करेगा दादा, एक्ट्रा कतरे रियाल के बदले 33.97 तो 33.97 बाड़ी थी के पैसा भेजी। चलो हाँ जी मस्त मोलो गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन, हट अच्छे तो

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं
2: नहीं, बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
3: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR. Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम

0: तभी तो वेलकम की इतनी कदर है।
1: लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2 लाख रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़ी इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस, एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल, लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट। जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक कि दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था. और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी. एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट. और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं. और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर. और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी. काफी शोज आए काफी शोज गए लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो है ना, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: सर मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आगे वो भी आगे हैं, आगे वो भी आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: लगा तुम्हें।
1: लुट कोई बातों में, देखे कोई प्यार से।
2: कौन मैं?
3: हाँ तुम, बस तुम।

0: आते हैं।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
3: 89.6
4: It's hot

0: राधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये है कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से है। Here we go।

0: शाबाश जी। अब मुझे डीएम करना है और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाए।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke, there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai. And inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट हैं, तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आमिर खान आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी, करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था, बहुत मजा आता था। मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
7: कैसे रुक सकता है।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s kids के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT platforms नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास used to be एकता कपूर के सीरियल्स, जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यू की सास भी कभी बहू थी, टुकुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो बहन जी।
2: हाँ जी।
1: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
1: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो। एक सेकंड बेटे, चुप।
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
1: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं नहीं, हाँ। इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
1: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: तो उतार लीजिए उसको।
1: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
1: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
2: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
1: हाँ, सुसु करा। चल,
2: उतार दीजिए, एक सेकंड।
1: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ जाए जरा। देखो आंटी कर रही
2: है क्लैपिंग करो।
1: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो,
1: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन, It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत
3: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Countdown shows में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो at that time this was just a melody for us. किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा.
0: मिर्ची 90s का सेट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना.
2: तेरे भी जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा.
1: What a melodious track यार. लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था. लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा. And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते. मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदाई हो जाता है यार. खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ. बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता. चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना. जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. Stay tuned to Mirchi, cause it's hot.
0: Midday Mohabbat, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Janelia Deshmukh.
3: Are you an honest critic?
4: I'm an honest critic, but I'm also good for your ego.
3: Are kya baat hai?
4: No, like even if you're my friend,
3: I mujhe validate kar le yaar. Hello, Janelia. I'm not feeling great.
4: Are you honest
3: too, man? Queen. Where's your crown?
2: She's an honest critic, but a very funny person also. Ye thi Janelia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
6: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
5: Relative se advice slow to kehte hain.
7: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
5: Isiliye main aapke paas aaya hoon promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho. Bhai kya kar raha tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 4 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कभी कभी ना जिंदगी हमें वही देती है जो हमें चाहिए होता है, ना कि वो जो हम मांगते हैं। तो अगर आज आपके दिन की शुरुआत या सफर थोड़ा सा मुश्किल रहा हो ना, तो बस एक बात याद रखिएगा, हर नया दिन ना एक नई उम्मीद लेकर आता है। सलाम नमस्ते, मैं हूँ मिर्ची ईशा और आज शाम की शुरुआत हम कर चुके हैं। तो भाई देखिए, चाय हो, कॉफी हो, ऑफिस का रास्ता हो या घर की बालकनी हो, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि अगले कुछ पल सिर्फ आपके नाम। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची।

0: कभी सोचा है, हम जिंदगी भर चीजें जोड़ते रहते हैं, पर जो चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है वो हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। किसी अपने के साथ बिताया हुआ वक्त। सच तो ये है कि जब सब कुछ होते हुए भी कोई पास ना हो, तब समझ में आता है कि मौजूदगी ही सबसे बड़ा प्यार है। ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं वो अपने पापा को ना बहुत महंगे से महंगे गिफ्ट लेके दी थी। तो एक बार ऐसे ही उनके दिमाग में आया, उन्होंने पूछा कि यार पापा आप मुझे बताओ कि आपका सबसे बेस्ट गिफ्ट आपको अभी तक कौन सा लगा। तो पापा मुस्कुराए और बोले कि बेटा गिफ्ट तो सब याद है, लेकिन एक दिन जब तुम बिना फोन देखे, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ मेरे पास बैठकर एक कप चाय पी लोगे ना, वो दो घंटे मेरी जिंदगी के सबसे कीमती गिफ्ट में काउंट किए जा सकते हैं। बस उस दिन से बेटे को समझ में आया कि भाई सच्ची में प्यार की कीमत ना चीजों से नहीं की जाती, वक्त से की जाती है। तो आज अगर आप किसी को याद कर रहे हैं या किसी को बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, जाके एक मैसेज करिए, मिलिए उनसे और थोड़ा प्यार साझा कीजिए, क्योंकि वक्त बिताना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। Stay tuned with me only on 89.6 Mirchi Van, it's hot. Mirchi.
1: हेलो
2: मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आप सुना है आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है? सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाइए।
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो, अपने गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
1: सुन ले बात मेरी, सुन पहले बात।
2: हाँ सर,
1: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है। सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Wade के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Yep,
2: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
3: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
5: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कभी नोटिस किया है कि बचपन की ना सबसे खूबसूरत यादें वही होती थी जहाँ पे हमने सिर्फ खेला नहीं, कुछ नया सीखा भी था। मुझे आज भी याद है हमारे स्कूल में समर कैंप्स होते थे। जब समर कैंप होते थे ना तो उसमें एक एक पीरियड हर चीज का होता था। पहले वॉलीबॉल खेलने का टाइम होता था तब हम वॉलीबॉल खेलते थे खूब सारा, एंड देन थोड़ी देर बाद ही ना साइंस का एक नया एक्सपेरिमेंट आ जाता था जिसमें अनियन पील करके उसमें आयोडीन का लिक्विड डाल के माइक्रोस्कोप से देखा जाता था। उसके अलावा फिर अपने इमेजिनेशन के साथ नए रोबोट डिजाइन करते थे, कुछ क्राफ्ट का करते थे, और शाम होते होते ना दोस्तों के साथ हंसी और यादें भी बना रहे होते थे। तो ये साइमल्टेनियसली चलता था। बस अगर आप चाहते कि आपके भी नया स्किल कोई जाने, कोई नई एक्टिविटी सीखे, तो कतर फाउंडेशन एजुकेशन सिटी इस समर लेके आया है आपके बच्चों के लिए एक ऐसा समर कैंप जहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होने वाली हैं, क्लासेस, एक्टिविटीज। ये एंड ऑफ अगस्त तक रहेगा, और ऐसे कैंप्स में ना बच्चे अच्छे से डिस्कवर कर पाते हैं कि व्हाट दे लाइक व्हाट दे डिसलाइक। तो बस अगर आप भी कहीं नहीं गए हैं और कतर में ही हैं तो अपने बच्चों को आज ही ज्वाइन करवाइए। और स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

कभी कभी एक छोटा सा स्टेप ना किसी की जिंदगी को थोड़ा और आसान बना देता है, और इस बार वो स्टेप है सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने पर्पल सैटरडे इनिशिएटिव के सेकेंड एडिशन के लिए एक नया QR कोड जारी किया है, जहां पे QR कोड को स्कैन करते ही ना आपके सामने ये 80 से भी ज्यादा आउटलेट्स, होटल्स, अट्रैक्शंस और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स की अपडेटेड लिस्ट है, जो स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर्स और एसेसिबिलिटी सर्विसेज दे रहा है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि ये 1 अगस्त तक रोज अपडेट होगी, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और QR कोड स्कैन कीजिए और इस इनिशिएटिव का ना पूरा पूरा फायदा उठाइए। तो और मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: ऐसे लगता ना इतनी गर्मी को देखे कि फिर डेथ ही हो जाएगी मेरी तो।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेदर की बात कर रहे तो 38 डिग्री सेल्सियस है, मोस्टली क्लाउडी, फील्स लाइक 48 डिग्री एंड 50% रहेगी ह्यूमिडिटी। बहुत ज्यादा गर्मी है, क्लाउडी किसी एंगल से नहीं लग रहा है, उतना ही सूरज है, उतना ही प्रकोप ढा रहा है अपना। और अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, ज्यादा चलने वाला काम मत कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ा कम कीजिए और बस गर्मी से बचिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। For bright future, call now 3100-0813.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Bollywood Only on Mirchi It's Hot.
4: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
5: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more all at one place. Call 5572-7387 today.
6: Our business is our business. None of your business.
7: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

कभी आपने नोटिस किया है कि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में रह तो रहे हैं, लेकिन हमारी आदतें ना अभी भी पुराने तरीकों वाली ही है। और अगर आप भी मेरी तरह पुराने ख्यालों वाले हैं और छोटी सी छोटी बात के लिए ऑफिसेज में जाना प्रेफर करते हैं, तो भाई थम जाइए। आपके लिए एक आसान ऑप्शन लेके आई हूँ और एक ऐसी न्यूज़ लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही वीज़ा प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेट्राश की ऐप खोलनी है, क्योंकि कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मेट्राश ऐप में ही ये डिजिटल सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं, ताकि लोगों को सर्विस सेंटर्स के चक्कर ना लगाने पड़े और वीज़ा फ़ी अब इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं। तो और वीज़ा की कॉपी सीधा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आ जाएगी, और करना कुछ भी नहीं है। मेट्राश की ऐप खोलनी है और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वीज़ा फ्रॉम द होम स्क्रीन, एंड वहाँ पे आप टैप करते ही आगे आपको ऑपरेशंस का ऑप्शन आएगा। देन यू हैव टू टैप दैट, चूज योर पे वीज़ा फी एंड टैप कंटिन्यू, एंड देन देयर विल बी दिस एप्लीकेशन जो है ये डिस्प्ले कर देगी कुछ रेलिवेंट वीज़ाज को। देखिए कितना आसान बना दिया आपके लिए, कितनी आसान भरी जिंदगी हो चुकी है एक टेक्नोलॉजी के साथ। तो कभी कभी हमें सिर्फ अपनी आदत बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सर्विसेज आपके फोन तक आ चुकी हैं तो फिर लाइन में खड़े होने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते? स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर अपडेट्स 89.6 पे, मैं शीशा के साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स हॉट। Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पता नहीं। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है तो उसका सबसे स्टाइलिश और जो एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है ना, वो तो आपको याद ही होगा। यस, बर्लिन। और अब उसी कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी लेकर आया ना नेटफ्लिक्स, ओ माय गॉड, यू हैव टू सी इट। ये सीरीज जो है ना, उस वक्त में ले जाती है जब बर्लिन अपनी लाइफ की सबसे एम्बिशियस हाइस्ट प्लान कर रहा होता है। लेकिन इस बार सिर्फ रॉबरी नहीं होती है, बल्कि फ्रेंडशिप, लव, लॉयल्टी और बिट्रेयल का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। हर एपिसोड में ना आपको एक स्मार्ट प्लानिंग दिखेगी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखेंगे, आपको स्क्रीन से चिपक कर ही रहना पड़ेगा। सीरियसली, मेरे को यही लगा, कल ही मैंने फिनिश की है ये, और बहुत ही अमेजिंग सीरीज है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बर्लिन का जो कैरेक्टर है ना, ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि मनी हाइस्ट खत्म होने के बाद ही उसके लिए एक अलग से स्पिन ऑफ सीरीज बनाई गई थी। और आपको इंटेलिजेंट क्राइम थ्रिलर्स और ये जो स्टाइलिश कैरेक्टर्स और सस्पेंस पसंद है ना, तो बर्लिन नेटफ्लिक्स पर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो बस इस हफ्ते का प्लान बर्लिन बिंज वॉच, और मेरे साथ बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स 89.6 पे मिर्ची 1.8।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100-0813।
2: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
2: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
2: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: और हम जहाँ चल जाते हैं, बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: लोग बोलते हैं ना कि इंसान की जिंदगी बड़ी ही मतलब नसीबों से मिलती है, बहुत नसीब वालों को मिलती है, लेकिन मुझे ना ये कुछ गड़बड़ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, सही नहीं है ये। और वो इसलिए क्योंकि मैंने ना पांडा हाउस में जाके पांडास देख लिए और उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ इन्हीं की आसान है यार, इनको पैसे दे रहे हैं हम लोग इनको देखने के लिए, खाना ऐसे मुफ्त में मिल रहा है पड़े पड़े, बस सो लेट पर से नीचे गिरो धड़ूम करके आवाज आएगी, बस लगेगी कहीं भी नहीं, ना कहीं हाथ टूटेगा ना पैर टूटेगा, ना मेरे को कोई शिकार करेगा, ना मैं किसी का शिकारी हूँ, बस बैठ के बैम्बू स्टिक्स खानी है, बस यही काम दिया है मुझे। अरे यार आप बताओ किसकी आसान जिंदगी है, हमारी या पांडा की? Stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 107.
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जिनेली एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेली, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
8: Authentic, original, and better than our right.

अब बात होगी पैसों की। तो भाई पैसे का हाल चाल कुछ इस प्रकार है कि एक कतरी रियाल इंटू इंडियन रुपीज इज 26.30, एक कतरी रियाल इंटू श्रीलंकन रुपीज इज 92.15, एक कतरी रियाल इंटू नेपाली रुपीज इज 42.08 एंड एक कतरी रियाल इंटू पाकिस्तानी रुपीज इज 76.33, एक कतरी रियाल इंटू बांग्लादेशी टका इज 33.98। घर पे भेजिए पैसे, ढेरों सारी खुशियां भी।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है, जलने वाले तो चलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

चाइना में ना एक स्पेशल बैम्बू ट्री होता है, जब उसका बीज बोया जाता है ना तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल भी कुछ नहीं दिखता और चौथे साल भी जमीन के ऊपर कुछ ही नहीं उगता। लेकिन जो इंसान उसको रोज पानी दे रहा होता है ना, जो उसका माली है, वो रोज उसे पानी देता है। उसको पता है कि कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी देखभाल कड़ी मेहनत और प्यार भरे तरीके से देता है। फिर आता है पांचवां साल और सिर्फ 5 से 6 हफ्तों में वो जो बैम्बू ट्री है ना, वो 80 से 90 फीट तक लंबा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अब ये सवाल है कि क्या बैम्बू सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो पिछले 5 सालों से अपनी रूट्स मजबूत बना रहा था। अगर जड़ मजबूत ना होती तो इतनी ऊंचाई संभाल ही नहीं पाता। बिल्कुल हमारी लाइफ भी ना इसी की तरह है। कभी कभी लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट्स तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन शायद उस वक्त आपकी रूट्स तैयार हो रही होती है, आपको इतना तैयार कर रही होती हैं आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस के साथ आपको इतना तैयार कर रही होती हैं कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो रहे होते हो। तो याद रखिए, सक्सेस जो है ना वो हमेशा दिखने से पहले अंदर ही अंदर बनती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब वक्त आएगा ना तो आपकी ग्रोथ भी सबको सरप्राइज कर देगी। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: एक वक्त की बात है, हर बार जब कोई पुरानी बिल्डिंग गिराई जाती थी ना, तो उसका मलबा बस एक प्रॉब्लम बन जाता था। धूल मिट्टी वेस्ट को लेकर ना सिर चकराया जाता था कि भाई इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हम लोग डाल देते हैं डंपिंग यार्ड में। लेकिन कतर ने इस कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। आजकल ने सोचा जिसे हम वेस्ट समझ रहे हैं वही तो कल की बिल्डिंग का फाउंडेशन बन सकता है। और बस 2022 से शुरू हुआ एक स्मार्ट सिस्टम जहां कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज किया जाने लगा। आज नतीजा ये है कि लगभग 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्सकवेशन मटेरियल दोबारा से इस्तेमाल किया गया है और 3 लाख टन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट रिसाइकल हो चुका है। नाउ ये सोचने की बात है कि इसी को बोलते हैं स्मार्ट डिसीजन एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सोचिए, जो पत्थर और मिट्टी कल तक बेकार लग रहे थे वो आज वही नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं। सिर्फ वेस्ट कम नहीं हुआ है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से हमने यूज किए हैं एंड ऑल्सो इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड ये सिर्फ रिसाइकलिंग की कहानी नहीं है बल्कि सोच बदलने की कहानी है कि जहां वेस्ट को वैल्यू में बदला जा रहा है और शायद इसी को बोलते हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर की शुरुआत। ऐसी ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: हेलो,
2: हाय शिवानी।
1: हाय
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता हूँ।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले।
2: शिवानी,
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो,
1: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ
2: शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। इस जंगल बुक के गाने को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। कितना ही फेमस था बचपन में ये, जैसे ही कहीं बजता था हम दौड़ के आ जाते थे कि बस अब शुरू हो गया जंगल बुक, बैठ जाओ और अब मैं अपने सोफे से या बेड से नहीं उठने वाला, ये देख के ही उठूंगा, यही होता था ना हमारे साथ। तो अगर आपको अब ऐसा एक जंगल वाला एक्सपीरियंस लेना है तो आपके कतर में होने जा रहा है इंटू द जंगल शो। जी हाँ, 23 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। इट इज़ एन इमर्सिव फॉरेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स में जो वो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, उसके अलावा जंगल के जो कैरेक्टर्स हैं वो इतना खूबसूरत तरीके से आपको स्टेज शो करके दिखाएंगे। एंड इट्स अ थियोरेटिकल पपेट्री हो रही है, डायनामिक डांसेस हैं, थ्रिलिंग आपको सर्कस इंस्पायर्ड एक्ट्स मिलेंगे, भाई और क्या चाहिए। सारी कलाकारियां आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। भाई करना क्या है, जाना है, आप जा सकते हैं ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में 23 जुलाई से ये 1 अगस्त तक है। 5:30 PM शुरू हो जाएगा, 7 PM भी टाइम है इसका और 8:30 PM भी इसका टाइम है। प्राइस इज फ्री, यस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कितना ब्यूटीफुल है ना कि एक एक्ट ऐसा देखने आप स्टेज पे जा रहे हो विद अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय देम, तो जरूर देखने जाना चाहिए यार, एटलीस्ट यू नो फॉर देम हु इज एन आर्टिस्ट जो शो कर रहे हैं अपनी आर्टिस्ट्री इन अ ब्यूटीफुल वे। तो जरूर जाइएगा और एंजॉय करिएगा इस इवेंट को एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: कभी आपने नोटिस किया है कि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में रह तो रहे हैं, लेकिन हमारी आदतें ना अभी भी पुराने तरीकों वाली ही है। और अगर आप भी मेरी तरह पुराने ख्यालों वाले हैं और छोटी सी छोटी बात के लिए ऑफिसेज में जाना प्रेफर करते हैं, तो भाई थम जाइए। आपके लिए एक आसान ऑप्शन लेके आई हूँ और एक ऐसी न्यूज़ लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही वीज़ा प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेट्राश की ऐप खोलनी है, क्योंकि कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मेट्राश ऐप में ही ये डिजिटल सर्विसेज शुरू कर दी गई है, ताकि लोगों को सर्विस सेंटर्स के चक्कर ना लगाने पड़े और वीज़ा फ़ी अब इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं। तो और वीज़ा की कॉपी सीधा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी, और करना कुछ भी नहीं है। मेट्राश की ऐप खोलनी है और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वीज़ा फ्रॉम द होम स्क्रीन, एंड वहाँ पे आप टैप करते ही आगे आपको ऑपरेशंस का ऑप्शन आएगा। देन यू हैव टू टैप दैट, चूज योर पे वीज़ा फी एंड टैप कंटिन्यू, एंड देन देयर विल बी दिस एप्लीकेशन जो है ये डिस्प्ले कर देगी कुछ रेलिवेंट वीज़ाज को। देखिए कितना आसान बना दिया आपके लिए, कितनी आसान भरी जिंदगी हो चुकी है टेक्नोलॉजी के साथ। तो कभी कभी हमें सिर्फ अपनी आदत बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सर्विसेज आपके फोन तक आ चुकी हैं तो फिर लाइन में खड़े होने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते हैं? Stay tuned with me for more updates, 89.6 पे मर्शीशा के साथ। It's hot.
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: छोटा सा स्टेप ना किसी की जिंदगी को थोड़ा और आसान बना देता है, और इस बार वो स्टेप है सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने पर्पल सैटरडे इनिशिएटिव के सेकेंड एडिशन के लिए एक नया QR कोड जारी किया है, जहां पे QR कोड को स्कैन करते ही ना आपके सामने ये 80 से भी ज्यादा आउटलेट्स, होटल्स, अट्रैक्शंस और स्पेशलाइज सेंटर्स की अपडेटेड लिस्ट है, जो स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर्स और एसेसिबिलिटी सर्विसेज दे रहा है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि ये 1 अगस्त तक रोज अपडेट होगी, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और QR कोड स्कैन कीजिए और इस इनिशिएटिव का ना पूरा पूरा फायदा उठाइए। तो और मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1.8।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।
5: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

कभी नोटिस किया है कि बचपन की ना सबसे खूबसूरत यादें वही होती थी जहाँ पे हमने सिर्फ खेला नहीं कुछ नया सीखा भी था। मुझे आज भी याद है हमारे स्कूल में समर कैंप्स होते थे। जब समर कैंप होते थे ना तो उसमें एक एक पीरियड हर चीज का होता था। पहले वॉलीबॉल खेलने का टाइम होता था तब हम वॉलीबॉल खेलते थे खूब सारा एंड देन थोड़ी देर बाद ही ना साइंस का एक नया एक्सपेरिमेंट आ जाता था जिसमें अनियन पील करके उसमें आयोडीन का लिक्विड डाल के माइक्रोस्कोप से देखा जाता था। उसके अलावा फिर अपनी इमेजिनेशन के साथ नए रोबोट डिजाइन करते थे, कुछ क्राफ्ट का करते थे और शाम होते होते ना दोस्तों के साथ हंसी और यादें भी बना रहे होते थे। तो ये साइमल्टेनियसली चलता था। बस अगर आप चाहते कि आपके भी नया स्किल कोई जाने, कोई नई एक्टिविटी सीखे तो कतर फाउंडेशन एजुकेशन सिटी इस समर लेके आया है आपके बच्चों के लिए एक ऐसा समर कैंप जहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होने वाली हैं, क्लासेस, एक्टिविटीज, ये एंड ऑफ अगस्त तक रहेगा। और ऐसे कैंप्स में ना बच्चे अच्छे से डिस्कवर कर पाते हैं कि व्हाट दे लाइक व्हाट दे डिसलाइक। तो बस अगर आप भी कहीं नहीं गए हैं और कतर में ही हैं तो अपने बच्चों को आज ही ज्वाइन करवाइए और स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 7 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

एक वक्त की बात है, हर बार जब कोई पुरानी बिल्डिंग गिराई जाती थी ना, तो उसका मलबा बस एक प्रॉब्लम बन जाता था। धूल मिट्टी वेस्ट को लेकर ना सिर चकराया जाता था कि भाई इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हम लोग डाल देते हैं डंपिंग यार्ड में। लेकिन कतर ने इस कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। आजकल ने सोचा जिसे हम वेस्ट समझ रहे हैं वही तो कल की बिल्डिंग का फाउंडेशन बन सकता है। और बस 2022 से शुरू हुआ एक स्मार्ट सिस्टम जहां कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज किया जाने लगा। आज नतीजा ये है कि लगभग 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्सकेवेशन मटेरियल दोबारा से इस्तेमाल किया गया है और 3 लाख टन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट रिसाइकल हो चुका है। नाउ ये सोचने की बात है कि इसी को बोलते हैं स्मार्ट डिसीजन एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सोचिए, जो पत्थर और मिट्टी कल तक बेकार लग रहे थे वो आज वही नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं। सिर्फ वेस्ट कम नहीं हुआ है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से हमने यूज किए हैं एंड ऑल्सो इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड ये सिर्फ रिसाइकलिंग की कहानी नहीं है बल्कि सोच बदलने की कहानी है कि जहां वेस्ट को वैल्यू में बदला जा रहा है और शायद इसी को बोलते हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर की शुरुआत। ऐसी ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट। अच्छा।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Benji.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड, एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटे, चुप.
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
2: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
1: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
2: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको.
2: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
2: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने. देखिए,
2: हाँ, सुसु करा. चल,
1: उतार दीजिए.
2: एक सेकंड. उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा. देखो आंटी कर रही
1: है.
2: क्लैपिंग करो. मुझे भी वो याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
1: और मैं पागल हूँ.
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
4: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM Mirchi 1.
9: It's hot.
10: Mixing in the house.

0: It's hot.
1: कभी आपने नोटिस किया है कि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में रह तो रहे हैं, लेकिन हमारी आदतें ना अभी भी पुराने तरीकों वाली ही है। और अगर आप भी मेरी तरह पुराने ख्यालों वाले हैं और छोटी सी छोटी बात के लिए ऑफिसेज में जाना प्रेफर करते हैं, तो भाई थम जाइए। आपके लिए एक आसान ऑप्शन लेके आई हूँ और एक ऐसी न्यूज़ लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही वीज़ा प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेट्राश की ऐप खोलनी है, क्योंकि कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मेट्राश ऐप में ही ये डिजिटल सर्विसेज शुरू कर दी गई है, ताकि लोगों को सर्विस सेंटर्स के चक्कर ना लगाने पड़े और वीज़ा फ़ी अब इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं। तो और वीज़ा की कॉपी सीधा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी और करना कुछ भी नहीं है। मेट्राश की ऐप खोलनी है और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वीज़ा फ्रॉम द होम स्क्रीन, एंड वहाँ पे आप टैप करते ही आगे आपको ऑपरेशंस का ऑप्शन आएगा। देन यू हैव टू टैप दैट, चूज योर पे वीज़ा फी एंड टैप कंटिन्यू, एंड देन देयर विल बी दिस एप्लीकेशन जो है ये डिस्प्ले कर देगी कुछ रेलिवेंट वीज़ाज को। देखिए कितना आसान बना दिया आपके लिए, कितनी आसान भरी जिंदगी हो चुकी है टेक्नोलॉजी के साथ। तो कभी कभी हमें सिर्फ अपनी आदत बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सर्विसेज आपके फोन तक आ चुकी हैं तो फिर लाइन में खड़े होने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते? Stay tuned with me for more updates, 89.6 पे मर्शीशा के साथ। It's hot.
0: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
2: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
1: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
2: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
1: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
2: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
1: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
2: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
0: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अरे अरे अरे अरे, मैं बस जाने वाली थी, बट मैंने कहा शायद आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है बतानी बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप टॉय फेस्टिवल नहीं गए ना अभी तक, तो बस चंद दिन रह गए हैं। और ये टॉय फेस्टिवल ना हर साल एक बार आता है और एक महीने के लिए आता है, तो बेहतर है कि अगर आप नहीं गए हैं, बच्चों को अपना बचपना और अच्छे से व्यतीत करने का ये जो मौका मिलता है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार है। क्योंकि हम लारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हम लोगों को तो हमारे मम्मी पापा ले जाते थे मेला देखने, और हम बस वही झूलों में दो झूले गिन के होते थे, हमारे नाम ये वो करके हम उसमें खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए आता है बना बनाया प्लान, चाहे वो कोई कार्टून कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई प्लेइंग एरिया हो, चाहे वो तरह तरह के कुछ टास्क हो, ये सब चीजें आती हैं आजकल के बच्चों के लिए। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो 31st तक ही है ये, जल्दी से बच्चों को लेके जाइए और एंजॉय करिए एंड स्टे ट्यून्ड।

अब देखिए समय तो हो चुका है मैं जाने का, लेकिन मुझे आज सबसे ज्यादा दुख इसीलिए लग रहा है क्योंकि कल से मैं आपके साथ शाम शानदार में नहीं आऊंगी। और शाम शानदार लेके आएंगे हमारे गौरव, मस्त मौला गौरव। लेकिन हाँ, मैं आपको मिलूंगी वीकेंड्स पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कतर में होने वाले वो सारे इवेंट्स, एग्जीबिशंस और सब कुछ आपको बताऊंगी वहीं वीकेंड वाइब पे। और उसके अलावा आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे मिर्ची वान कतर पे, और ऑल्सो मिर्ची ईशा को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आप अपडेटेड रहेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या एग्जीबिशन हो रही है, सब कुछ बताएंगे। So stay updated, stay safe and keep smiling. Bye bye, take care. Milti hoon weekend pe and see you soon. And tab tak ke liye keep listening to 89.6 Mirchi 1, it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
3: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट। जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
2: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070 7687।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। पर आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है, और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिसदा।
4: नंबर 20।

ओ बाय द वे, अरिजीत सिंह का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय AR रहमान एंड इरशाद कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी। अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच टू इट। और आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम विक्की डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विक्की डोनर, दिस इज पानी दा रंग।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे
3: हैं? सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाई.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ.
3: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: एनाकोंडा में कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया.
2: मैं भाग ले गया
3: सर. बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात
3: मेरी, बात
2: सुन पहले बात.
3: हाँ सर.
2: और ऐसा बंद करिए, बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर. बोलिए.
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते, समझ गया ना तू बात? एक
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Mercy Morga, na vedke sad. Only on Mercy. It's hot.
1: Yep, again.
2: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
2: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
6: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: नंबर 10।

0: जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफ कोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल टिल 1961. सो द स्टोरी इज सेट इन दैट एरा वेयर इट वाज टाइम वेयर लॉट ऑफ पोर्चुगीज वेयर इंडियंस वर देयर, सो इन बिटवीन दैट there was trade, a lot of port, business. So in that era, if there is struggle for power, greed, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there's a lot of complex human emotions where we there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: तो सेटिंग पुराने दौर की है, इसमें गैंगस्टर्स हैं, एक पावर स्ट्रगल है, प्यार भी है, और साथ में रिवेंज भी, यानी एक प्रॉपर लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक मसाला यूनिवर्स। लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10, और नंबर 9 यह टॉक्सिक का तबाही। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: दोस्ती कहीं कुछ सुले मैडम. No sorry, no thank you.
4: भाई साहब, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, entertainment चाहिए.
5: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ entertainment खूब मिलेगा.
6: खूब मिलेगा. खूब मिलेगा.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन. It's hot.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
9: नंबर 8.

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था। मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जाम्पल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, and it has been sung by the flawless, the perfect Sonu Nigam. Mera rewind track of the week.
1: Top 20 rewind.

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है। Because the song is out of the countdown after almost 60 weeks, लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

0: एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा बना, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ
1: नंबर वन।

0: इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं बिकॉज वी लव आवर मूवीज सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉक 20 दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
3: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है क्या करूं
3: ओ माय बॉय तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ
4: साले को खोपड़ी तोड़ साले

अब बहनों भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत हमने सुना फिल्म शिखर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अंग्रेज बच्चों, 68 मतलब 68। इस गाने के लिए आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन किंतु परंतु बट, ये गाना पहले लता जी को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से लिरिक्स थोड़े से डेरोगेटरी थे। यू नो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स, शंकर जयकिशन का ये कॉम्पोजिशन था। और उस साल गीत माला पर ये गीत पायदान नंबर 9 पर था। बड़ी हैरानी है मुझे, इसे नंबर 1 पे होना चाहिए था। लेकिन नंबर 1 पे जो गाना था वो हम सुनेंगे राइट है शागिर्द फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सबका बाना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा, उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं मैं, सर मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पहले रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश हो नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं,
4: आशीष। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट पटक।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1.
12: It's hot.
13: Purani
0: Jeans with Charu, only on

आप आए बाहर आई मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ये मैं आपको भी बोल रही हूँ और जिस फिल्म का गाना हमने सुना उसका नाम भी बता रही हूँ। तो गाने में राजेंद्र कुमार जी साधना जी उदास उदास होके ये गाना गा रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी वेल ड्रेस्ड हैं लेकिन एज यूजुअल क्लीन शेवन नहीं है, हल्की हल्की स्टबल है उनपे। साधना जी सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए रो रही है लेकिन उनका काजल लाइन और एकदम परफेक्ट है। हिमाचल की वादियों में ये गाना शूट हुआ था और हिमाचल से हम चलते हैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग जहाँ पे अगला गाना शूट हुआ था, जहाँ शर्मिला जी ट्रेन में बैठी हैं, मस्त सा जूड़ा बना के उस पे फूल भी लगा है, किताब पढ़ रही हैं और साथ में जीप में राजेश खन्ना जी पहाड़ी टोपी पहनकर उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं गाना गाते हुए। आराधना फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन.
0: पुरानी जीन्स विद चारू.

कुछ चीजों की किस्मत में टूटना ही लिखा होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे उम्मीदें, सपने, वादे, खिलौने, चूड़ियाँ। चूड़ियों पर जरा एक शेर सुनिए, तनवीर गाजी साहब का है। मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टांका था, शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। एक ये शारिक कैफी साहब का सुनिए, कांच की चूड़ी लेकर मैं जब तक लौटा उसके हाथों में सोने का कंगन था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जिसमें बड़े प्यार से चूड़ियाँ गिफ्ट की जा रही हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची 107.8।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
4: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ, ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
3: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
9: मुझे कुछ कहना है,
10: मुझे भी कुछ कहना है,
9: मुझे कुछ कहना है,
10: मुझे भी कुछ कहना है।
9: पहले तुम,
10: पहले तुम,
9: पहले तुम,
10: पहले तुम,
9: पहले तुम,
10: तुम,
9: तुम,
10: तुम,
9: तुम,
10: तुम,
9: तुम,
10: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
9: अच्छा मैं कहती हूँ

0: एक बार एक इंटरव्यू में राज कपूर साहब से मेरा नाम जोकर फिल्म के फेलियर के बारे में और उनकी फेवरेट फिल्म के बारे में पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था।
1: पंजाबी स्कंदन की माँ जीवेंदी सात कर्म न देंदी वंड, तो सात जनती तो है वो, सभी उसी को प्यारे हैं, वो कर्म नहीं बांट के देती, उनके अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना योग होता है। तो मेरे लिए ये कहना पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है कौन सी नहीं, सभी तो मेरी हैं। हाँ, उनके अपने अपने कुछ करिश्मे थे जो कुछ बहुत ही चली हैं और कुछ नहीं चली। जिंदगी में भी ये होता है और शायद फिल्मों के बारे में भी ये होता है कि चंद तस्वीरें जो चलती नहीं है ना, तो वो कुछ रह जाती हैं पीछे, तो जो निकल जाता है आगे वो तो खैर खुद ब खुद बहुत ही अहमियत पा लेता है, बहुत से सहारे और प्रशंसाएं और ये सब कुछ उसके लिए होते हैं। जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है, तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर।
0: वाह साहब क्या बात है, इसी बात पे मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना सुनेंगे। शंकर जयकिशन जी का कंपोज किया हुआ, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, मुकेश जी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
2: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो चलेंगे, तुम मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
3: खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी

मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अब जो हम गाना सुनने वाले हैं वो एक विजुअल डिलाइट है, एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना जो पेरिस में शूट हुआ है। इसमें शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर जी हैं। शम्मी कपूर जी शर्मिला टैगोर को फॉलो कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं वो अपने एटीट्यूड में है। और पेरिस में बहुत अच्छे से शूट किया गया है गाना, जहाँ पे कभी ये रोड पे हैं गाड़ी में, फिर शर्मिला जी वो जो टूरिस्ट बस होती है डबल डेकर उसमें चढ़ जाती हैं, फिर वो पानी वाला स्टीमर होता है उसमें वो चढ़ जाती हैं। तो अलग अलग तरह से शहर को दिखाया गया है। और मैं जब भी इस तरह का कोई पुराना गाना देखती हूँ ना जिसमें दुनिया के किसी शहर को कैप्चर किया गया होता है, तो मुझे खुशी तो बहुत होती है और थोड़ा थोड़ा ऐसे गम भी होता है कि मैं जब भी पेरिस शहर को देखूंगी वो मुझे इस रूप में तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसके नए रूप में शायद कुछ और नई बातें होंगी, लेकिन मुझे तो पुरानी बातें देखनी है ना जो मुझे शायद इसी गाने में या किसी और जगह जब पेरिस को उस टाइम पे शूट किया गया होगा किसी वीडियो में, वहाँ देखने को मिलेगी। खैर, अभी यहाँ पर ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: हाय शिवानी
1: हाय
2: हाय शिवानी कंग्रेचुलेशंस मुबारक हो गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी।
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात से
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता।
2: अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना। शिवानी मेरी बात सुनो,
1: नहीं नहीं
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
0: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स
0: विद चारू, ओनली ऑन

1970 की बहुत सारी फिल्में एक बहुत ही खास वजह से चली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और वो वजह थी राजेश खन्ना साहब की फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर। भाई 1969 में आराधना फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब तो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, सनसनी मच गई थी उनकी। तो उनकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करने के लिए दूसरी कई फिल्मों में उनकी फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर चलाया गया था, तो काफी पब्लिक दूसरी फिल्में देखने गई थी ये ट्रेलर देखने के लिए। और आन मिलो सजना उन 17 कंसेक्यूटिव हिट्स में से थी जो राजेश खन्ना साहब की उस टाइम फिल्में हिट हुई थी। इसी बात पे इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
4: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन.
7: इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

1978 की एक फिल्म है हीरा लाल पन्ना लाल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही टाइम पास फालतू टाइप की फिल्म है, जो 70s की टिपिकल फिल्म नहीं होती थी फॉर्मूला वाली कि बचपन में बच्चों के माँ बाप को मार दिया जाता है, फिर वो किन हालातों में बड़े होते हैं, बड़े होके बदला बदला लेते हैं, वो सब। लेकिन एक खास बात यह है कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में ना, जब क्रेडिट्स आते हैं, तब पुलिस फोर्स से माफी मांगी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बकायदा लिखा है उस अपॉलोजी में कि हमसे हमारी ओवर एंथुजियाज्म में ऐसा हो गया कि हमने पुलिस को गलत तरह से पोर्ट्रे कर दिया, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम किस तरह से पुलिस फोर्स को पोर्ट्रे किया गया है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे कई बार मुझे लगता है कुछ पुरानी फिल्में अगर आज के टाइम में रिलीज होती ना, तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी में आती कि बैन हो जाती, ट्रोल हो जाती। खैर, अभी के लिए हीरा लाल पन्ना लाल में से लाल निकाल देते हैं। हीरा पन्ना फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
4: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
5: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
4: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
3: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 89.6
0: मिर्ची।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

एक बहुत पुराना 19वीं सदी का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक अमेरिकन सिविल वॉर सॉन्ग है। सिविल वॉर मतलब नॉट द मूवी, इट्स एन एक्चुअल वॉर सॉन्ग जो वॉर के बाद सोल्जर्स के घर आने की खुशी को दर्शाता है। ये एक अमेरिकन आयरिश म्यूजिशियन ने बनाया था गाना, जिसके बोल अंग्रेजी हैं, लेकिन ट्यून एक आयरिश फोक ट्यून है। थोड़ा सा सुनिए जरा।

अभी ऐसा सुनने में आता है कि इसी के म्यूजिक से इंस्पायर हुआ था वो गाना जो हम नेक्स्ट सुनने वाले हैं। अब वो हुआ था कि नहीं वो आप डिसाइड कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
2: It's hot.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जरनल सिंह, ओए जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

मुझे ना YouTube पे रैंडमली पुरानी फिल्में देखने का बड़ा ही शौक है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले मैंने जो फिल्म देखी वो है 1980 की स्वयंवर। एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म गुंडम्मा कथा का रीमेक है। इसमें मेन लीड में संजीव कुमार, शशि कपूर, विद्या सिन्हा, मौसमी चैटर्जी हैं। बाकी नादिरा, डॉक्टर श्री राम लागू, शशिकला, असरानी, रंजीत, मदनपुरी, बहुत सारे लोग हैं। और सबसे अडोरेबल इसमें मुझे लगे संजीव कुमार जी, मुझे एनी भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सीन कुछ यूं होता है कि वो खुद एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस बंदी से उनको शादी करनी है उसके घर में नौकर बन के रहते हैं। अच्छा, ये बंदी विद्या सिन्हा होती है और इसी बंदी की सिस्टर मौसमी चैटर्जी थोड़ी नकचड़ी होती है। इनको सुधारने के लिए संजीव कुमार के जो भाई प्ले करते हैं शशि कपूर, वो इनके साथ कुछ ड्रामा करते हैं। फन एंटरटेनिंग फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो। अभी इसका गाना सुनेंगे जो फिल्म में शशि कपूर एंड मौसमी चैटर्जी पे पिक्चराइज्ड है। राजेश रोशन की कॉम्पोजिशन, गुलजार साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो बहन जी।
2: हाँ जी,
1: ये एक सेकंड, ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
1: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
1: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगे एक सेकंड सर। आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, हाँ, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
1: एक सेकंड, इधर आओ, हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी उसका,
2: तो उतार लीजिए।
1: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
1: अच्छा, ये बेब है, एक सेकंड।
2: देखिए, सुसु करा होगा उसमें, देखिए।
1: हाँ, सुसु ही करा है, सुसु करा है। चल,
2: उतार दीजिए, एक सेकंड,
1: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो। मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ, ओह नो,
1: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

1980 की शान फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट पता है क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी तो थे, लेकिन उनके साथ थे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। लेकिन इन दोनों को, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी को, रमेश सिप्पी साहब जिनकी ये फिल्म थी उनसे कुछ इश्यूज हो गए और दोनों ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह पे आए शशि कपूर एंड बिंदिया गोस्वामी। अच्छा, विनोद खन्ना साहब थे, लेकिन फिर उन्होंने सब मोह माया सांसारिक प्रेम छोड़कर स्पिरिचुअल गुरु की शरण में जाने का डिसीजन लिया और उनकी जगह पे आए शत्रुघ्न सिन्हा साहब। एंड ये बिलीव करने में ना मुझे कई बार ऐसे मुश्किल आती है कि शाकाल के रोल के लिए संजीव कुमार साहब को साइन किया गया था, लेकिन सैडली तब उन्हें उनका फर्स्ट हार्ट अटैक आया और उस वजह से उन्होंने फिल्म नहीं की। तब उनकी जगह पर कुलभूषण खरबंदा साहब आए और शाकाल बनकर सब जगह छाए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

चारू खान का घर मन्नत। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये घर शाहरुख खान ने 90s में यस बॉस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिस्कवर किया और 2001 में इसे खरीदा। लेकिन उससे पहले ये घर काफी टाइम रेंट पे अवेलेबल होता था फिल्मों की शूटिंग के लिए। ऐसा सुनने में आता है कि ये घर लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी में बना था। विला वियना इसका नाम था। पहले इसके पारसी ओनर्स थे, उसके बाद काफी ओनर्स रहे और इनमें से कुछ ओनर्स ने इसे रेंट पे दिया फिल्मों की शूटिंग के लिए। एंड वन ऑफ सच फिल्म्स वाज तेजाब। तेजाब फिल्म में जो माधुरी दीक्षित का घर दिखाया गया है वो यही तो घर है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: थे किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नते

चाहिए।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's

मैं सोच रही थी जैसे कितने गाने हमारे लिए खास होते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ के किसी याद से, किसी स्पेशल मोमेंट से जुड़े होते हैं, ऐसे ही फिल्म स्टार्स के लिए भी तो होते होंगे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बल्कि उन्होंने तो उन गानों में काम किया होता है। वो गाना शूट करते वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, बाद में फिर जब वो गाना सुनते होंगे उनको वो मोमेंट्स याद आते होंगे। एक बहुत ही स्पेशल गाना है जो ऐसा सुनने में आता है कि शम्मी कपूर साहब के पास जब उनके लास्ट डेज में जो मोबाइल फोन था ना, उसकी रिंगटोन था। शंकर जयकिशन का कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग पगला कहीं का फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।